0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया नी निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है। पटवारी, सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मलिने जावू है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणी मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेनी एक नया विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि खेत में फसल विविधता खेती ना जोखिम ने कम करवानी हमज आपणे हरते ले सके। ताजे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक की घना आकानी बातें थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसु आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8।

0: માઇનબુનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હું અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડીની. જેમ કે ભાઈનબુનું અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળો હો ફસલ વિવિધતા, ખેતીને જે જોખમ હે એને કમ કરવાની હમસ આપણે હળતે રાખવી હે. તો ભાઈનબુનું અડા વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમથી કે જોડી રહી વિશે વિશેષજ્ઞ તો સત્ય કે પહેલા આપણે હામરી લણાની વાતે મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કે આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈ ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે શ્રોતા સાથીઓ કો દેતે હૈ. તો આજ કાર્યક્રમ મેં હમારી આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે એક હી ખેત મેં ફસલ વિવિધતા, ખેતી કે જોખમ કો કમ કરને કી સમજ હમ કૈસે વિકસિત કરે. જૈસા કે હમ ફસલ વિવિધીકરણ કો લેકર શ્રોતા સાથીઓ સે કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે હમેશા હી બાતચીત કરતે રહેતે હૈ. તો આજ કાર્યક્રમ મેં આપ હમ યહી બતાઈએ કે યે ક્યું મહત્વપૂર્ણ હૈ ઓર કિસ તરીકે સે હમારે કિસાન भाई बहन इसकी समझ रख सकते हैं.
1: जी, तो बहुत अच्छा विषय है और ये जो है वर्तमान की एक आवश्यकता भी है कि हम इन चीजों पर हमारा ध्यान आकर्षित होना जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: तो जैसे हम खेती की बात करते हैं तो खेती प्रकृति, मौसम, मिट्टी, पानी और बाजार से जुड़ा हुआ कार्य है. किसान चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर ले फिर भी क्या होता है कि जो सूखा है, अधिक बारिश है या कम बारिश है, कीट या रोग और तापमान में बदलाव के कारण या बाजार के भाव गिरावट के कारण हमेशा जो क्या होता है कि किसानों को नुकसान हो सकता है ऐसा नहीं करने पर. तो जैसे मान लो कि एक खेत में आपने एक ही तरह की फसल की तो क्या होता है कि अगर उसको नुकसान हो जाता है तो आपकी जो खाद्य सुरक्षा है परिवार की वो प्रभावित हो सकती है. तो इसमें जोखिम कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यही है कि एक ही खेत में आप अलग अलग जो है विविध फसलें लगाए. तो इसका यही है कि जैसे आप अगर एक खेत में एक से अधिक फसलें लगाएंगे तो आपको एक फसल पर जो निर्भर रहना है वो नहीं पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि परिस्थितियां जो है वो कैसी भी हो सकती है तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों को पहले से प्लान करना चाहिए कि हम एक ही प्रकार के फसल ना लगाएं.
0: बिल्कुल.
1: जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि आपने अगर बारिश में मूंग लगाया एक ही प्रकार और बारिश अधिक हो गई तो आपका पूरा मूंग नष्ट हो जाएगा.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर मूंग नष्ट हो गया आप खेत खाली हो जाएगा और आपको कितना नुकसान होगा क्योंकि आपने बुआई का उसका खर्चा किया है, जुताई करवाई है, बीज डाला है, आपके परिवार ने उसके साथ मेहनत लगाई है तो वहाँ पे फिर दिक्कत ही हो जाएगी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों को क्या है पहले से प्लान करके रखना चाहिए कि हम एक ही खेत में दो से तीन फसलें लगाएं.
0: बिल्कुल.
1: जैसे हम सोच सकते हैं कि जैसे मक्का के साथ में आपने अरहर लगा दिया या फिर आप जैसे हमारे क्षेत्र में कुछ किसान सोयाबीन करते हैं उनके साथ में उड़द कर दिया, गेहूं के साथ आपने चना कर दिया या सरसों कर दी तो ये क्या होता है. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे खेत है उसमें कुछ सब्जियों के बीज भी डाल.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर मान लो कि ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें क्या होगा कुछ तो आपको वहाँ से मिलेगा. अगर एक ही प्रकार की फसल होगी तो आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा.
0: बिल्कुल. तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से फसल में विविधता होना बहुत जरूरी है, हमें एक ही फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है. तो सर खेत में अलग अलग फसलों की जरूरत आखिरकार क्यों होती है.
1: देखिए एक्चुअल क्या होता है कि ये जो पूरा हमारी जो साइकिल है जो चक्र है वो इस तरह चलता है कि हमें हर परिस्थितियों को देखते हुए हमें फसल करनी चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो क्लाइमेट है, पर्यावरण है, उसमें बहुत सारा बदलाव आया है. जैसे हम इसी साल की बात करें तो इस साल हमारे यहाँ पर्याप्त बारिश नहीं हुई है.
0: बिल्कुल.
1: और नहीं हुई है तो अब आप सोचिए कि जो आपने खरीफ में किया है वो तो आपको कुछ मिलेगा लेकिन आप रबी में करोगे अगर पानी नहीं हुआ तो आपको समस्या होगी.
0: बिल्कुल.
1: तो इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को सोच समझ के उसका प्लान करना चाहिए. जैसे मान लो कि अभी पानी कम है तो हम जैसे पहले गेहूं, चना, मक्का ये सब करते हैं हम लोग तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि मुझे चना करना चाहिए या गेहूं करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि अगर आपके वहाँ पानी नहीं है तो अगर आप गेहूं करेंगे तो उसमें आपको 5 से 6 पानी चाहिए लेकिन चना में आपको 3 से 4 पानी में आपको चना
0: हो जाएगा. बिल्कुल.
1: तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए. दूसरा कि एक ही खेत में 2 या 3 जो फसलें हम करते हैं आपने बताया तो उससे जोखिम कम होता है कि अगर मान लो कि आपकी एक फसल खराब होगी तो आपको 2 फसल मिल जाएगी.
0: बिल्कुल.
1: और मैं तो ये कहता हूँ कि 2 से 3 नहीं, आप हांगणी खेती जो हमारी परंपरागत खेती है उसको अपनाना चाहिए क्योंकि हांगणी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कुछ तो मिलेगा.
0: बिल्कुल,
1: और कुछ मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको विविधताएं भी मिलेगी। जैसे आपको मान लो कि आपका खेत पूरे में आपने 6 से 7 फसलें लगाई और वो सभी मिलेगी, तो आपको एक परिवार का जो पोषण की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी पोषण की।
0: बिल्कुल,
1: कि आपको अलग अलग चीजें वहां से मिल जाएगी, तो इसलिए हमें लगाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि होता क्या है कि हमारे जो किसान भाई है एक ही खेत में बार बार मिक्स फसल लगाते, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि हर बार हमें खेत बदलना चाहिए और फसलों की जो स्थिति है उसको बदलना चाहिए।
0: बिल्कुल सर,
1: तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसे हमारे यहाँ पे रबी की हम बात करेंगे अभी, तो वो हमारे यहाँ आंगनी बहुत अच्छी होती है।
0: बिल्कुल सर,
1: जिन किसान भाइयों के पास में पानी है उनके वहाँ कोई समस्या नहीं, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे फिर हमें सोचना होगा कि चना के साथ में क्या लगाना है, चना लगाना है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बीज की विविधता, खेत की विविधता और भोजन की विविधता तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे किसान भाई बहन खेत की योजना कैसे बनाएं?
1: देखिए, हम बात खेत की योजनाएं करते हैं तो जैसे कि आपके पास में 3 बीघा जमीन है, आपके पास में 3 खेत है, तो होता क्या है कि कभी कभी किसान भाई क्या है एक ही खेत में बार बार एक ही फसल करते हैं, लेकिन आपको उस योजना बनाना जरूरी है कि मुझे इस खेत में इस बार मैंने मक्का की है तो शायद रबी में मैं चना करूं।
0: बिल्कुल,
1: अब वापस आप मक्का करोगे तो उसमें आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। दूसरा कि जब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की, तो होता क्या है कि अगर आप एक ही खेत में बार बार करेंगे तो हो सकता है कीट का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिले या वहाँ जो खाद मिट्टी का वो कम हो जाए, तो हमको सारी प्लानिंग सोचनी पड़ेगी कि कितना खाद है, किस खेत में हमने डाला है, किस खेत में हम गेहूं कर सकते हैं, किस में चना कर सकते हैं या किस में अरहर कर सकते हैं, जो भी मतलब, तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है।
0: बिल्कुल
1: सर, इसमें एक भाग ये भी है पानी की उपलब्धता और संसाधन, कि आपके पास में कौन सा खेत है जिसमें पानी अधिक मिल जाएगा, कौन सा है जिसमें बहुत कम मिलेगा, जहाँ बहुत कम मिलेगा वहाँ पे आप कम पानी वाली फसल करो, जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ बहुत ज्यादा जो पानी वाली फसल कर सकते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहन किस तरीके से इसकी योजना बना सकते हैं और फिर उन्हें कार्य करने की जरूरत है, यही सर समुदाय मिलकर किस तरीके से इन सारी चीजों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं?
1: देखिए, समुदाय में एक वातावरण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लो कि आपने शुरुआत की कि आपने एक ही खेत में 4-5 फसलें की आपने और अच्छा रिजल्ट आपका रहा परिणाम, तो बाकी जो किसान भाई है समुदाय के उनको आप बता सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो हम जब भी खेती बाड़ी करें तो समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनको बैठना चाहिए कि इस बार की परिस्थितियां क्या है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में बहुत अच्छा ज्ञान है कि कौन सी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए।
0: जी जी,
1: तो उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाने के लिए समुदाय स्तर पर हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप पहले से अगर जागरूक हो और अच्छे से आपने काम किया है तो वो जो है चीजें आपको अच्छे से फायदा देगी, क्योंकि आपका प्लान फिक्स होगा, इसके बाद में आपने जो फसलें लगाई वो जो एक योजना के तहत लगाई और योजना के साथ साथ में क्या हुआ कि आपने अपनी जो जलवायु है उसका भी ध्यान रखा।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से ये आप पूरा प्लान है वो आपको सक्सेस ज्यादा देगा, जबकि आप बिना प्लान के करेंगे तो वो शायद नहीं हो।
0: बिल्कुल,
1: दूसरी बात ये समुदाय स्तर की हम बात करते हैं, अगर समुदाय पूरा इस तरह से करेगा तो सबका फायदा होगा, अगर 1-2 व्यक्ति कर रहे हैं या उन्हीं के पास ज्ञान है तो शायद सबको देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर,
1: तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से उन्हें फसल विविधीकरण की जो चीजें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि खेती के जोखिम को हम कम कर सकते हैं, तो सर जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक फसल की निर्भरता है उसको कम करना चाहिए, खेत में अपनी विविधताएं बढ़ाएं, मौसम की जो जोखिम है उससे बचेंगे आप, परिवार के खाद्य सुरक्षा होगी और आपकी खेती है वो मजबूत और स्थिर होगी, तो इसके तहत आप इस तरह से आप कर सकते हैं और निश्चित ही है इससे बहुत ज्यादा फायदा है हम लोगों को होगा।
0: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: ભાઈ બનુ જેમ કે હવે આપણે વૈસલ મંગીલાલજી જોડે તક હતો ને એણે આપણને બતાડ્યું હે કે હરતે આપણને ખેત મે એક જ ફસલ નથી કરવી, આપણને ઘણા કની ફસલ કરવી હે. ને આ વાતે આપણે ટેમ ટેમ માટે કાર્યક્રમ ખેતીવાડીને માધ્યમ થકી આપને બતાડતો રહો, તાકી આપને ખેતી થકી મળવાવાળી જે આય હે એ આપણે અસલ બનાવીને રાખી શકો. તો આપણે ખેત મે અલગ અલગ ફસલ કરીને આપણે ક્યારેક કોઈ ફસલ ખરાબ થઈ જા, ક્યારેક પાણીની કમીને કારણે કોઈ ફસલ આમની તેમની પેલી થઈ જા, તો આપણે અલગ અલગ ફસલ કરવી હે. જેમ કે સરે આપણને બતાડ્યું કે ઘઉંને હાથે આપણે સણો કરી શકો, એમ ઘણા કાની ચીજે હે જેને હાથે આપણે અલગ અલગ ચીજે કરીને આપણે ફસલ તકી મળવાવાળા ઉત્પાદનને વધાવી શકો. તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનું. તો સૂટો તો પડો, પણ સાથે પહેલાં હંગરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડો.

0: सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
4: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, बच्चे हमारे घर के रौनक और देश के भविष्य हैं। हम उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, बड़ों का सम्मान करना बताते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हम उन्हें यह भी सिखाते हैं कि अगर अचानक बाढ़ आ जाए, आग लग जाए या कोई दूसरी आपदा आ जाए तो उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। श्रोता साथियों, आपदा कभी बताकर नहीं आती। ऐसे समय में घबराने के बजाय सही जानकारी और पहले से मिली सीख बच्चों की सुरक्षा में मदद कर सकती है। इसलिए आज का हमारा रेडियो नाटक इसी विषय पर आधारित है। जी हाँ श्रोता साथियों, आपदा के समय बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को पहले क्या सिखाना चाहिए, तो श्रोता साथियों इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं आपदा के समय बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को पहले से क्या सिखाना है, इस विषय को लेकर। मैंने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहा था कि आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसे समय में घबराने के बजाय सही जानकारी और पहले से मिली सीख बच्चों की सुरक्षा में अधिक मदद कर सकती है। तो आइए साथियों, सुनते हैं कमला और रमा की बातचीत के माध्यम से एक ऐसी कहानी जो हर परिवार के लिए जरूरी है।
1: अरे रमा बहन, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाथ में ये कागज और थैला लेकर क्या तैयारी कर रही हो?
2: अरे राम राम कमला बहन, मैं तो आंगनवाड़ी केंद्र जा रही हूँ। वहाँ बच्चों और उनके माता पिता को आपदा के समय सुरक्षा के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई जाएंगी। मैंने सोचा जाने से पहले तुम्हें भी बताती चलूं।
1: आपदा के समय सुरक्षा? अरे बहन, ऐसी बातें तो बड़े लोगों को सीखनी चाहिए, बच्चों को इन सब बातों की क्या जरूरत है? उन्हें तो बस पढ़ाई करनी चाहिए और खेलना चाहिए।
2: यही तो हम अक्सर सोच लेते हैं कमला बहन, लेकिन जरा सोचो, अगर घर में अचानक से आग लग जाए या तेज बारिश से पानी भरने लगे, और अगर बच्चा अकेला हो घर में और उसे कुछ समझ ना आए, तब क्या होगा?
1: रमा बहन, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बच्चे तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, ऐसे में उन्हें क्या समझ आएगा?
2: ऐसे में बच्चों को डराना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें तैयार करना है। जैसे कि हम उन्हें सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना सिखा सकते हैं, ठीक वैसे ही आपदा के समय सुरक्षित रहने के तरीके भी सिखाए जा सकते हैं।
1: अच्छा, तो सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए?
2: सबसे पहली बात, खतरे के समय घबराकर इधर उधर भागना नहीं है। बच्चे को अपनी उम्र और स्थिति के अनुसार सुरक्षित कदम उठाने चाहिए और किसी भरोसेमंद बड़े की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये भी समझाना होगा बहन कि अगर आसपास कोई बड़ा मौजूद न हो तो वह क्या करे।
1: हाँ, ये बात तो जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात में कई बार नालों में पानी भर जाता है, बच्चे खेलते खेलते पानी के पास भी पहुँच जाते हैं।
2: बिल्कुल बहन, तुमने सही कहा। बच्चों को पहले ये समझाना चाहिए कि तेज बहाव वाले पानी, भरे हुए नालों, नदी और बाढ़ के पानी में कभी नहीं उतरना है।

0: लेकिन बच्चों को अभ्यास के जरिए सिखाना भी हमें चाहिए। अगर वे घर के अंदर हो और भूकंप के झटके लगने लगे तो उन्हें नीचे झुकना है, मजबूत मेज के नीचे सिर और गर्दन को ढक कर पकड़ कर रहना सिखाएं, खिड़कियों, शीशों और भारी अलमारियों से दूर रहना चाहिए ये भी बताना होगा। साथ ही झटके चलते समय सीढ़ियों की तरफ भागना या लिफ्ट का इस्तेमाल करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है बहन।
1: और जब भूकंप के झटके बंद हो जाए तब?
0: तब सावधानी से बाहर निकलना चाहिए, अगर बाहर जाना सुरक्षित हो तो। क्षतिग्रस्त दीवारों और इमारतों से दूर रहना चाहिए और स्थानीय प्रशासन या फिर बचाव दल के निर्देश मानने चाहिए। साथ ही बहन बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि बिना अनुमति किसी क्षतिग्रस्त इमारत में वापस नहीं जाना चाहिए।
1: अच्छा, यह तो बहुत काम की बात है। अब आप आग लगने की बात भी बता दो, क्योंकि घर में चूल्हा तो जलता ही रहता है और कई बार बच्चे रसोई में भी आ जाते हैं।
0: ऐसे में हमें अपने बच्चों को साफ साफ समझाना चाहिए कि माचिस, लाइटर, जलते चूल्हे और बिजली के खुले तारों से दूर रहना है। आग अगर लग जाए तो सामान बचाने या खिलौना उठाने के लिए वापस नहीं जाना है।
1: और मान लो कि कमरे में आग लग गई और धुआं भरने लगे तब?
0: तब बच्चों को तुरंत सुरक्षित निकास की तरफ जाना चाहिए। धुआं हो तो नीचे झुककर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर धुआं ज्यादा जमा हो सकता है। दरवाजा खोलने से पहले यदि संभव हो उसके गर्म होने की जांच किसी सुरक्षित तरीके से उन्हें करनी चाहिए। गर्म दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ता बंद है बहन तो सुरक्षित जगह पर रहकर जोर से मदद मांगनी चाहिए और आपातकालीन सेवा को सूचना पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और आग बुझाने के लिए पानी डालना?
0: हाँ बहन, हर आग पर पानी डालना सही नहीं होता। तेल या बिजली से लगी आग पर पानी डालने से खतरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में बच्चों को आग बुझाने का जिम्मा नहीं देना चाहिए। उनका पहला काम सुरक्षित बाहर निकलना है और मदद बुलाना है।
1: अब समझ में आया कि बच्चों को सिर्फ खतरा बताना नहीं बल्कि उससे बचाने का तरीका सिखाना भी जरूरी है।
0: हाँ कमला, और एक बात बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद अभिभावक का नाम और फोन नंबर भी याद हमें करवाना चाहिए, और साथ ही छोटे बच्चों को घर का पता भी सरल तरीके से याद कराया जा सकता है।
1: लेकिन अगर बच्चा भीड़ में अपने परिवार से पिछड़ जाए तब?
0: तब हम उसे समझाएं कि वह किसी सुरक्षित और पहचानी हुई जगह पर रुके, अगर उसके लिए वहाँ रुकना सुरक्षित हो तो। साथ ही पुलिस कर्मी, बचाव कर्मी या फिर निर्धारित सहायता केंद्र से मदद भी वे मांगे। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाना है और अगर खतरे वाली जगह पर है तो पहले सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचना चाहिए।
1: सही है रमा बहन, पर आजकल तो बच्चे मोबाइल भी चलाते हैं, क्या उन्हें आपातकालीन नंबर भी सिखाना जरूरी है क्या?
0: बिल्कुल जरूरी है बहन, ये तो भारत में आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ये नंबर और मदद मांगने का तरीका सिखाया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये भी समझाएं कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करना है, मजाक या खेल में नहीं। आप उन्हें ये नंबर याद दिलवाएं, जैसे कि आप उन्हें बताएं कि आपातकालीन सहायता का नंबर है 112।
1: एक बात और बताओ रमा, अगर बच्चा स्कूल में हो और कोई आपदा आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
0: हाँ, स्कूल में शिक्षक और सुरक्षा कर्मियों के निर्देश उन्हें मानने चाहिए। बच्चों को स्कूल का सुरक्षित निकास तय, एकत्र होने की जगह और आपातकालीन अभ्यास के नियम भी पता होने चाहिए बहन। साथ ही भगदड़ नहीं करनी है, धक्का नहीं देना है और किसी को गिरा हुआ अगर वे देखें तो खुद जोखिम लेने के बजाय तुरंत शिक्षक या फिर बचाव कर्मी को उन्हें बताना चाहिए।
1: अच्छा, इसका मतलब है कि घर और स्कूल दोनों ही जगहों पर आपदा से पहले सुरक्षा जरूरी है।
0: बिल्कुल, परिवार को भी मिलकर एक छोटी सी आपदा योजना बनानी चाहिए, जैसे कि घर से सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते कौन से हैं, परिवार के लोग कहाँ मिलेंगे, जरूरत पड़ने पर किस पड़ोसी से मदद मांगनी है और जरूरी फोन नंबर कहाँ लिखे होंगे।
1: और क्या घर में कोई सामान भी तैयार रखना चाहिए क्या?
0: हाँ बिल्कुल रखना चाहिए।

0: और वो है एक छोटा सा आपातकालीन बैग जिसमें पीने का पानी, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, बैटरी, सीटी या कुछ सूखा भोजन और साथ ही जरूरी संपर्क नंबर। बच्चों की जरूरत के हिसाब से ज्यादा कपड़े या दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी रखी जा सकती है और इसे हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ जरूरत पड़ने पर आसानी से ये मिल सके, लेकिन खतरे के समय इसे लेने के लिए अपनी जान जोखिम में हमें नहीं डालनी है।
1: लेकिन रमा बहन, हमारी तरफ तो कई घरों में छोटे बच्चे खेतों के पास खेलते हैं, कहीं बिजली के तार पड़े होते हैं, कहीं कुएं या पानी के गड्ढे होते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ सिखाना जरूरी है क्या?
0: जरूर, बच्चों को खुले कुएं, गहरे गड्ढे, टूटे बिजली के तार, मशीनों और खतरनाक जगहों से दूर रहना हमें सिखाना होगा। अगर कहीं खतरा दिखाई दे तो उसे छूने या खुद ठीक करने के बजाय किसी बड़े को बताना है, ये भी हम अपने बच्चों को बताएं।
1: बिल्कुल, लेकिन बच्चों को बार बार खतरे की बातें बताएंगे तो कहीं वे डरने तो नहीं लगेंगे?
0: हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है बहन। बच्चों को डराकर नहीं, खेल खेल में हमें सिखाना होगा। जैसे कि उनसे पूछो कि अगर तेज बारिश में रास्ता पानी से भर जाए तो तुम क्या करोगे, फिर प्यार से सही जवाब समझाओ, घर में सुरक्षित निकास का अभ्यास करवाओ, बच्चों की बात सुनो और उनके सवालों का सरल जवाब दो।
1: यानी कि उन्हें यह भरोसा देना है कि मुसीबत आने पर वे मदद मांग सकते हैं और उन्हें अकेले सब कुछ नहीं करना है।
0: बिल्कुल, साथ ही बच्चों को ये भी बताना है कि आपदा आने पर डर लगना स्वाभाविक है, वे रो सकते हैं, घबरा सकते हैं या चुप भी हो सकते हैं। ऐसे समय में बहन, उन्हें डांटने के बजाय शांत करना हमें चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना चाहिए।
1: अब तो मैं आज ही अपने बच्चे के साथ बैठकर ये बातें करूंगी, घर का सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगी, जरूरी फोन नंबर लिखकर रखूंगी और उसे बताऊंगी कि खतरे में किससे मदद लेनी है।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात याद रखना बहन, कि बच्चों को आपदा से बचाने की जिम्मेदारी केवल परिवार की नहीं होती, स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत और पूरा समुदाय मिलकर बच्चों को सुरक्षित रखने की सीख दे सकता है। समय समय पर अभ्यास होगा तो बच्चे सही कदम उठाने में अधिक सक्षम भी होंगे।
1: सच कहा बहन, हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने और पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके सुरक्षा की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित बच्चा ही निश्चिंत होकर सीख सकता है, खेल सकता है और अपने सपनों की ओर बढ़ सकता है।
0: बिल्कुल कमला, आपदा को हमेशा रोक पाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन सही जानकारी, पहले से तैयारी और एक दूसरे की मदद से नुकसान कम करने की कोशिश जरूर की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
2: तो श्रोता साथियों, आपने सुना कमला और रमा का संवाद। इस बातचीत से हमें यह सीख मिलती है कि आपदा के समय बच्चों की सुरक्षा केवल घटना के बाद की जाने वाली कोशिश नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए। बच्चे को बाढ़ के पानी से दूर रहना, भूकंप के समय सिर और गर्दन की सुरक्षा करना, आग लगने पर सुरक्षित बाहर निकलना, आपातकालीन नंबर याद रखना और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगना सिखाएं। ये बातें उसकी उम्र के अनुसार सरल भाषा और नियमित अभ्यास के माध्यम से समझाइए। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को हर परिस्थिति का डर सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उनके मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा हो, वे खतरे को पहचान सके और सही समय आने पर मदद मांग सके। माता पिता, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव के सभी लोग मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें और अपनी बात को खुलकर रख सकें। क्योंकि श्रोता साथियों, बचपन तभी सच्चा और खुशहाल होता है जब बच्चे के पास सपने देखने की आज़ादी के साथ सुरक्षित रहने की समझ भी हो। इसी प्यारे से संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वाघा रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातें रही, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी तेज बारिश, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी आग, कभी भूस्खलन या कोई दूसरी आपदा हमारे सामने अचानक चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। श्रोताओं,
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है घबराना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना। और अगर समाज में कोई वर्ग सबसे तेजी से लोगों तक पहुंच सकता है, नई जानकारी अपना सकता है और दूसरों को भी जागरूक कर सकता है तो वो है हमारे युवा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी सोच के साथ आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हम बात करेंगे आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हम पहले एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: यार इनकी भी जोड़ी क्या कमाल की है ना।
1: जब लोग हमारी जोड़ी को पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे ना, तो ऐसी सारी जोड़ियों को भूल जाएंगे।
0: संजय, हमारा एक खाब पूरा तो होगा।

0: वैसे दुनिया जहान में हर जगह हमारे पोस्टर्स होंगे, हर जगह।
1: क्या हुआ?
2: मुझे भारत सक्सेना ने फिल्म के लिए

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार। अगर बात करें जागृति जी की, आपदा केवल एक घटना नहीं एक सामूहिक चुनौती है, तो हम देखते हैं कि जब अचानक कोई प्राकृतिक या फिर मानव जनित संकट आता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: एक पूरे परिवार, मोहल्ला, गांव या शहर प्रभावित इससे हो सकता है। सड़कें बंद हो सकती है, बिजली और संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में कठिनाई भी हो सकती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और राहत एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन समाज के स्तर पर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यहीं से युवाओं की भूमिका भी सामने आती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा समाज की ऐसी शक्ति है जागृति जी, जो ऊर्जा, तकनीक, सीखने की क्षमता और लोगों से जुड़ने की क्षमता को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि युवा बिना सोचे किसी जोखिम वाली जगह पर चले जाएं। असली मदद वही है जो सुरक्षित, संगठित और सही जानकारी के आधार पर की जाए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आपदा के समय युवा क्या कर सकते हैं, अगर इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो सबसे पहले खुद सुरक्षित रहें।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि आपदा के समय दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम देखते हैं कि हम भावनाओं में आकर तुरंत किसी व्यक्ति को बचाने के लिए खतरे वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद घायल हो जाएगा श्रोताओं, तो समस्या और बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवाओं के समझना होगा कि बहादुरी का मतलब खतरे में कूदना नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है।
0: जी हाँ,
1: अगर कोई स्थान असुरक्षित है तो वहाँ प्रशिक्षित बचाव दल के आने का इंतजार करना बेहतर है।
0: बिल्कुल,
1: और कहा भी क्या है कि पहले सुरक्षा फिर सहायता, यही समझदारी की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, अगर इसके आगे बात करें सही जानकारी को आगे पहुंचाने की, तो आपदा के समय अफवाह बहुत तेजी से फैलती है।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के कोई संदेश साझा कर सकता है। साथियों, युवा इस स्थिति में जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही आगे साझा करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए तो सुरक्षित स्थान कहाँ है, राहत शिविर कहाँ बनाया गया है और किस नंबर पर सहायता मिल सकती है, या प्रशासन की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं। गलत जानकारी किसी व्यक्ति को खतरे में डाल सकती है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए युवा बने अफवाह फैलाने वाले नहीं बल्कि सही सूचना पहुंचाने वाले।
1: जी हाँ, जैसा कि कशिश आपने बनाया कि सही जानकारी को हम किस तरह से हमारे श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग लोगों का किस तरह से ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। आपदा के समय हर व्यक्ति की जरूरत एक जैसी नहीं होती है। छोटे बच्चे डर सकते हैं, बुजुर्गों को चलने में परेशानी हो जाती है और दिव्यांग लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: युवा अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान पहले से कर सकते हैं और आपदा की स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहयोग भी कर सकते हैं, बशर्त है कि ऐसा करना सुरक्षित हो। युवाओं की थोड़ी सी संवेदनशीलता कशिश किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों प्राथमिक उपचार की जानकारी भी सीखना जरूरी है। यानी कि हर युवा को बुनियादी फर्स्ट एड और आपातकालीन प्रतिक्रिया की जानकारी सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि कट लगने, मामूली चोट, बेहोशी जैसी परिस्थितियों में प्राथमिक सहायता की जानकारी उपयोग हो सकती है। साथियों, इसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, प्रशिक्षित संस्थाओं या फिर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ही प्रशिक्षण लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि गंभीर स्थिति में प्रशिक्षित चिकित्सा सहायता जरूरी है। युवा डॉक्टर बनने की कोशिश न करें बल्कि जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का माध्यम वे बन सकते हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि आपदा के समय हमारे युवा किस तरह से मददगार बन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आगे भी बातें बताएंगे हमारे श्रोता साथियों को, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी कि किस तरह हमारे युवा साथी आपदा के समय मददगार बन सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपदा आने के बाद ये सोचना है कि अब कहाँ जाना है कई बार परेशानी बढ़ा देता है, इसलिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। युवा अपने गांव, मोहल्ले, समुदाय में जानकारी जुटाने में सहयोग कर सकते हैं कि सुरक्षित स्थान कौन से हैं, आपातकालीन संपर्क नंबर कौन से हैं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, राहत केंद्र या सुरक्षित निकासी मार्ग कौन से हैं, परिवार के सदस्यों से संपर्क न हो पाए तो क्या वैकल्पिक योजना होगी।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि युवा केवल आपदा के समय ही नहीं बल्कि आपदा आने से पहले भी समाज के मददगार बन सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही ऐसे में हमारे युवा साथी सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि आज का युवा डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फोन और इंटरनेट आपदा के समय एक महत्वपूर्ण माध्यम साथियों बन सकते हैं। ऐसे में हमारे युवा साथी सोशल मीडिया के माध्यम से सही चेतावनी, आधिकारिक हेल्पलाइन, सुरक्षित स्थान और जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ पर भी उन्हें सावधानी जरूरी है, जैसे कि किसी घायल व्यक्ति की तस्वीर या निजी जानकारी बिना अनुमति के साझा करना मदद नहीं है, किसी अफवाह को वायरल करना भी मदद नहीं है। जागृति जी, हम कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल जानकारी, जागरूकता और सहायता के लिए होना चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, आपदा के बाद लोग अक्सर कपड़े, भोजन, पानी और दूसरी जरूरी चीजें दान करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा इस काम को व्यवस्थित करने में सहयोग कर सकते हैं कशिश, लेकिन बिना जरूरत जाने बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करने के बजाय स्थानीय प्रशासन या राहत संगठनों की वास्तविक जरूरत को समझना अधिक प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा सामग्री को व्यवस्थित करने, पैक करने और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं, जहां ये कार्य सुरक्षित और अधिकृत तरीके से हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि बच्चों में डर कम करने में मदद कर सकते हैं हमारे युवा साथी। स्वयंसेवक बन सकते हैं लेकिन प्रशिक्षण के साथ बने, यानी कि श्रोताओं, युवा समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर स्वयं सेवा कर सकते हैं।
1: जी,
0: लेकिन आपदा प्रबंधन में केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण, अनुशासन और टीम वर्क भी जरूरी है। युवा स्थानीय प्रशासन, मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं या आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सीख सकते हैं कि संकट की स्थिति में सुरक्षित तरीके से कैसे सहयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, प्रशिक्षित युवा केवल मददगार नहीं बल्कि सक्षम मददगार बनता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आपदा समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी चुनौतियां खत्म हो गई। कई परिवारों को घर, रोजगार, शिक्षा और सामान्य जीवन दोबारा शुरू करने में समय लग सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा बच्चों की पढ़ाई में सहयोग, जागरूकता अभियान, सामुदायिक सफाई, पौधारोपण, स्थानीय स्तर पर जानकारी साझा करने जैसे कई कार्यों में योगदान दे सकते हैं। यानी कि युवाओं की भूमिका आपदा से पहले तैयारी और आपदा के दौरान सुरक्षित सहायता और आपदा के बाद पुनर्निर्माण, तीन चरणों में हो सकती है।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कशिश हमारे श्रोता साथियों से कि आपदा के समय सबसे बड़ा हथियार केवल संसाधन नहीं बल्कि तैयारी और जागरूकता होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी गांव का युवा पहले से जानता है कि आपदा की स्थिति में परिवार को क्या करना है, किससे संपर्क करना है और सुरक्षित स्थान कहाँ है, तो संकट के समय अपने परिवार और समुदाय के लिए मजबूत सहारा बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आप कल्पना कीजिए कि किसी गांव के कुछ युवा मिलकर अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे लोगों को आपदा से बचाव के बारे में बता रहे हैं, परिवार को आपातकालीन संपर्कों की जानकारी दे रहे हैं, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रशासन के साथ समन्वय करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे युवा केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। ये भावना हमें बताती है श्रोताओं कि समुदाय की ताकत केवल बड़ी मशीनों या संसाधनों में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदार लोगों में भी होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि साथियों, हम आपदा के समय घबराएंगे नहीं, हम अफवाह नहीं फैलाएंगे, हम सही जानकारी साझा करेंगे और हम बच्चों और बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरों की मदद करेंगे और आपदा से पहले तैयारी को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। कहा जा सकता है साथियों कि आपदा कभी बताकर नहीं आती, लेकिन उससे निपटने की तैयारी हम पहले से कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, वे आज के समाज की सक्रिय शक्ति भी है। उनकी ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे जागृति जी, तो वही ऊर्जा किसी मुश्किल समय में किसी परिवार के लिए सहारा, किसी बच्चे के लिए हिम्मत और पूरे समुदाय के लिए उम्मीद बन सकती है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगली बार जब हम आपदा शब्द सुने तो केवल खतरे की कल्पना न करें, उसके साथ एक और शब्द याद रखें, तैयारी। क्योंकि आपदा के समय जो युवा सुरक्षित सोचता है, सही कदम उठाता है और दूसरों का हाथ थामता है कशिश, वही सच्चे अर्थों में समाज का मददगार युवा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, आपदा के समय युवा सिर्फ मदद करने वाले हाथ नहीं बल्कि जागरूकता, तैयारी और जिम्मेदारी की मजबूत कड़ी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि बातें भी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है आपदा से पहले तैयारी, गांव की सुरक्षा को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि रात का समय है, अचानक तेज बारिश शुरू हो चुकी है, कुछ देर में गांव की गलियों में पानी भरने लगता है, किसी किसान की फसल पर संकट मंडरा रहा है और किसी परिवार को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए।
0: बिल्कुल
1: ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये होता है श्रोताओं कि हम क्या करें और कहां जाएं। लेकिन साथियों, अगर गांव के लोगों को पहले से पता हो कि सुरक्षित स्थान कहां है, आपातकाल में किससे संपर्क करना है, जरूरी सामान कहां रखा है और बच्चों और बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित पहुंचाना है, तो यही तैयारी संकट के समय बहुत बड़ी काम आती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है। लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है आपदा से पहले तैयारी गांव की सुरक्षा को लेकर। तो जैसा कि अंजलि, कुछ बातें हमने गीत से पहले करी भी थी, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आपदा हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी काफी हद तक हमारे हाथ में होती है। गाँव की असली ताकत केवल उसके खेत, घरों और संसाधनों में नहीं है, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की एकता, समझदारी और सजगता में होती है। जब पूरा गांव मिलकर सुरक्षा की योजना बनाता है अंजलि, तो वो कठिन परिस्थितियों का सामना और अधिक मजबूती से कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे कि आपदा से पहले तैयारी गांव की सुरक्षा। तो श्रोताओं, आइए समझते हैं कि हम अपने गांव को सुरक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इसके लिए हम सभी को सबसे पहले आपदा को समझना है और उसके संकेतों को पहचानना है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार आपदा है क्या। जब कोई प्राकृतिक या मानवीय घटना जनजीवन, घरों, खेतों, पशुओं और सार्वजनिक संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, तो वह आपदा का रूप ले सकती है।
0: जी हाँ,
1: प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, भूकंप, आकाशीय बिजली, तेज आंधी, अतिवृष्टि और लू जैसी परिस्थितियां शामिल होती है। वहीं घरों या खेतों में आग लगना, बिजली से जुड़ी दुर्घटना और अन्य आकस्मिक घटना भी गांव के लिए संकट पैदा कर सकती है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि हमारे ग्रामीण जीवन में प्रकृति का विशेष महत्व है। खेती वर्षा पर निर्भर करती है, पशुओं के लिए पानी और चारे की आवश्यकता होती है, गांव के रास्ते मौसम के कारण प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हमें अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां आने वाली संभावित आपदाओं को समझना चाहिए।

0: आते हैं, सुरक्षित स्थान खोजते हैं और सहायता के लिए लोगों को बुलाते हैं। लेकिन अगर यही काम हम पहले से कर ले तो संकट के समय हमारी परेशानी कम हो सकती है। मान लीजिए श्रोताओं कि किसी गांव में भारी बारिश की चेतावनी मिली है। अगर गांव के लोगों ने पहले से नालों की सफाई कर दी है, कमजोर रास्तों की पहचान कर ली है और सुरक्षित स्थान तय कर लिए हैं, तो वे अधिक व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसके विपरीत अंजलि, हमारे श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी को रास्ते की जानकारी नहीं है, जरूरी सामान तैयार नहीं है और लोगों को ये भी नहीं पता है कि सहायता के लिए किससे संपर्क करना है, तो संकट के समय भ्रम पैदा हो जाता है। आपदा से पहले तैयारी का अर्थ केवल सामान इकट्ठा करना नहीं है दोस्तों, इसमें जानकारी जुटाना, जिम्मेदारियां तय करना, सुरक्षित स्थानों की पहचान करना और समय समय पर अभ्यास करना भी शामिल है। आपदा प्रबंधन से संबंधित सरकारी दिशा निर्देशों में भी जोखिम कम करने, पूर्व तैयारी, समय पर चेतावनी और कई संस्थाओं के बीच समन्वय पर जोर दिया जाता है। इसलिए हर गाँव में चर्चा होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और हम उनसे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए किसी भी गांव की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित योजना बहुत उपयोगी होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये योजना गांव के लोगों की भागीदारी से तैयार की जानी चाहिए ताकि सभी को अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी हो। सबसे पहले ग्राम पंचायत की बैठक में संभावित खतरों पर चर्चा की जा सकती है। गांव के बुजुर्गों के अनुभव, किसानों की जानकारी और स्थानीय लोगों के सुझाव इसमें मददगार हो सकते हैं। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें बाढ़ या जल भराव की आकांक्षा वाले क्षेत्रों को देखना है, सुरक्षित और खुले स्थानों की पहचान करनी है, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन की देखरेख करनी है, गांव से बाहर जाने वाले सुरक्षित रास्तों के बारे में हमें पता होना चाहिए, पेयजल के स्रोत और जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी है उनका हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे घर या क्षेत्र जहां रहने वाले लोगों को आपात स्थिति में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हमें तय करना है कि आपदा की चेतावनी मिलने पर सूचना हमें कौन देगा।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में कौन सहयोग करेगा और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सहायता के लिए हम किससे संपर्क कर सकते हैं। यह भी जरूरी है श्रोता साथियों कि योजना केवल कागज पर न रहे, समय समय पर उसकी समीक्षा हो और मौसम और गांव की परिस्थितियों में बदलाव आने पर उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जा सकते हैं। क्योंकि जागृति जी, गांव की सुरक्षित योजना तभी सफल होगी जब गांव का हर व्यक्ति उसे समझे और उसमें अपनी भूमिका पहचाने।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम परिवार की तैयारी को लेकर भी बताएंगे कि छोटी छोटी सावधानियां परिवार को लेकर हमें किस तरह से बरतनी है। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि आपदा से पहले की तैयारी सुरक्षित तरीके से हमें कैसे करनी है, जिसमें हमने जाना कि सबसे पहले हमें आपदा क्या होती है, उसके संकेतों को समझना है और साथ ही उससे पहले तैयारी क्यों जरूरी है और गांव की अपनी आपदा सुरक्षा योजना हम कैसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ही जागृति जी, अब बात आती है परिवार की तैयारी, छोटी छोटी सावधानी और बड़े लाभ की।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आपदा से निपटने की तैयारी केवल पंचायत या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक परिवार भी कुछ आवश्यक कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पीने का सुरक्षित पानी और आसानी से उपयोग किया जा सकता है, टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार की सामग्री होनी चाहिए, नियमित रूप से ली जाने वाली जरूरी दवाइयाँ होनी चाहिए, मोबाइल चार्ज रखने के लिए उपलब्ध साधन होने चाहिए, जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षित प्रतियां और महत्वपूर्ण संपर्क नंबर होने चाहिए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता, मौसम के अनुसार अतिरिक्त कपड़े और स्वच्छता सामग्री भी होनी चाहिए। परिवार को ये पता होना चाहिए अंजलि कि बिजली, गैस या अन्य घरेलू सुविधाओं को सुरक्षित तरीके से बंद करने की व्यवस्था कहाँ है। ऐसी व्यवस्था का उपयोग केवल तभी करें श्रोताओं जब ऐसा करना सुरक्षित हो और संबंधित निर्देशों की जानकारी हो।
0: बिल्कुल
1: आपदा के समय घबराकर सामान जुटाने की जगह पहले से तैयारी करना और अधिक उपयोगी होगा। जरूरी सामान को समय समय पर जांचते रहना चाहिए ताकि पानी, भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री अनुपयोगी न हो जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा की, तो श्रोता साथियों, किसी भी गांव की सुरक्षा का सही आंकलन इस बात से होता है कि संकट के समय वहां रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है या नहीं। बच्चों को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि आपदा की चेतावनी मिलने पर उन्हें क्या करना है, किस जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाना है और अनजान सूचनाओं पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षकों की मदद से सुरक्षा अभ्यास कराए जा सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी दी जा सकती है और ये भी बताया जा सकता है कि किसी आपात स्थिति में शिक्षक या परिवार के निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है। तो श्रोता साथियों, कह सकते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई अकेला रहता है या उसे चलने फिरने में सहायता चाहिए तो गांव के स्तर पर सहयोग की व्यवस्था बनाई जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है जागृति जी कि आपदा की तैयारी में केवल सामान्य व्यवस्था नहीं बल्कि हर व्यक्ति की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। सुरक्षित गांव वही है जहां संकट के समय कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही ग्राम पंचायत और समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि समुदाय के लोगों को समझना होगा कि आपदा के समय केवल अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को भी समझना होगा। बिना प्रशिक्षण के जोखिम भरे बचाव कार्य नहीं करने चाहिए। बाढ़ के तेज पानी में उतरना, क्षतिग्रस्त बिजली के तारों के पास जाना, असुरक्षित भवन में प्रवेश करना खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे समय में सुरक्षित दूरी बनाए रखना और प्रशिक्षित बचाव दल की सहायता लेना भी जरूरी है। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि सही सूचना, चेतावनी और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के कारण सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन हर तेजी से फैलने वाली सूचना सही हो ये जरूरी भी नहीं है। कई बार हमें पुरानी घटना का वीडियो नई घटना बताकर साझा कर दिया जाता है, कभी कभी बिना पुष्टि के भी ये संदेश फैल जाता है कि किसी स्थान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसी सूचनाएं लोगों में अनावश्यक घबराहट पैदा कर देती है, इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि सही समय पर मिली सही जानकारी लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए श्रोता साथियों को आपदा के समय घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि समझदारी की दिशा में कदम बढ़ाना है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों बाढ़ की चेतावनी मिले तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पानी से भरे रास्तों या तेज हवा बहाव वाले नालों को पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आकाशीय बिजली और तेज आंधी के दौरान खुले मैदानों, अकेले खड़े पेड़ और असुरक्षित स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित और पक्के भवन में आश्रय लेना उचित है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ भूकंप आने पर स्थिति के अनुसार सिर और गर्दन को सुरक्षित रखते हुए मजबूत मेज के नीचे झुककर, ढककर, पकड़कर रहने जैसे सुरक्षित उपाय अपनाए जा सकते हैं। झटके रुकने पर क्षतिग्रस्त भवन से सावधानी पूर्वक बाहर निकलना चाहिए यदि बाहर निकलने का रास्ता सुरक्षित हो तो।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ आग लगने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, दूसरों को चेतावनी देने और अग्निशमन सेवा को सूचना देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। धुएं से भरे स्थान में प्रवेश करके सामान निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों इन सभी परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है कि हर आपदा के लिए सुरक्षित उपाय अलग हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम रेडियो संवाद के बारे में बताएंगे कि श्रोताओं अब जरा अपने गांव के बारे में आप सोचिए, यदि आज ही भारी बारिश हो जाए या किसी अन्य आपदा की चेतावनी मिल जाए तो क्या हमें पता है कि सुरक्षित स्थान कहाँ है? हमें गांव में पहले से सुरक्षित स्थान तय करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर समय बर्बाद न हो। हमें बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था भी बनानी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों हम कहना चाहेंगे कि हमें पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र और आपातकालीन सहायता से जुड़े संपर्कों की सूची भी तैयार रखनी होगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि श्रोताओं आप सोचिए कि आपके गांव में सुरक्षा के लिए कौन से 3 काम सबसे पहले किए जाने चाहिए। क्या गांव के रास्ते सुरक्षित है? क्या जल निकासी की व्यवस्था ठीक है? क्या सभी लोगों तक चेतावनी पहुंचाने का तरीका है? इन सवालों पर परिवार, ग्राम पंचायत और समुदाय के साथ चर्चा कीजिए, क्योंकि जब हम मिलकर तैयारी करते हैं तभी सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आपदा से पहले की गई तैयारी हमारे जीवन, आजीविका, पशुधन और गांव के संसाधनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें याद रखना चाहिए कि आपदा आने के बाद समय बहुत कीमती होता है, इसलिए सुरक्षा के बारे में सोचने का सही समय संकट आने से पहले ही है। हम अपने गांव में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प ले सकते हैं, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमने सभी बातों को जाना। हम अपनी ग्राम पंचायत की बैठकों में आपदा सुरक्षा को मुद्दा बनाएंगे और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जब गांव का हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर परिवार तैयार होगा, हर समुदाय साथी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हमारा गांव अधिक सुरक्षित बन सकेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि बहुत सारी बातें की आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अब देख पा रहे हैं कि समय चला है विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नु समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट को समझना भी जरूरी। रिपोर्ट हाथ में आने के बाद क्या करें? कहते हैं श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होते हैं तो समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते हैं।
0: जी
1: कभी
0: हाँ।
1: कमजोरी महसूस होने पर, कभी चक्कर आने पर, तो कभी डॉक्टर की सलाह पर हम खून की जांच, शुगर की जांच, थायराइड और दूसरी जांचें करवाते हैं। जांच करवाने के बाद मनीषा रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है तो हम उसे लेकर घर तो ले आते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस रिपोर्ट में लिखे अंकों, शब्दों और संकेतों का क्या मतलब है? क्योंकि कई बार रिपोर्ट में किसी जांच का परिणाम सामान्य सीमा से ऊपर या नीचे लिखा होता है।
0: बिल्कुल।
1: उसे देखकर कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो कई यह सोचकर रिपोर्ट को रख देता है कि शरीर में कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग दूसरों की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट की तुलना करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि रिपोर्ट हाथ में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से समझना और उसके अनुसार उचित कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी
1: इसी
0: हाँ।
1: महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे समझना है और किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो बातें तो ढेर सारी होंगी मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य जांच को समझना जरूरी, रिपोर्ट हाथ में आने के बाद क्या करें। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि स्वास्थ्य जांच करवाना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर हर दिन कई तरह के काम करता है।
1: बिल्कुल,
0: हम चलते हैं, काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं। इन सभी कामों के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन श्रोता साथियों, कई बार शरीर में होने वाली परेशानी की शुरुआत में हमें कहीं खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम करता रहता है और उसे लगता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि श्रोता साथियों कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका पता जांच के माध्यम से ही चलता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को खून में शुगर का स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है लेकिन उसे शुरुआत में कोई खास परेशानी नहीं होती है। इस तरह श्रोता साथियों कुछ लोगों में खून की कमी हो सकती है जिसका पता खून की जांच से ही चलता है। ब्लड प्रेशर भी कई बार स्पष्ट लक्षणों से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार में बीमारी का इतिहास और डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच करवाना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि हम जांच तो करवा लेते हैं लेकिन रिपोर्ट हाथ में आने के बाद सबसे पहले क्या करें। तो साथियों, रिपोर्ट मिलने पर सबसे पहले उस पर अपना नाम, उम्र और जांच की जानकारी सही से देख लें। रिपोर्ट में कौन कौन से जांच हुई है और उसके परिणाम क्या है, इसे ध्यान से पढ़ें। यदि कोई शब्द या जानकारी समझ में नहीं आता है तो उसे समझने के लिए स्वास्थ्य कर्मी की मदद लें। रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और डॉक्टर को दिखाएं। यदि डॉक्टर आगे की जांच या उपचार की सलाह देते हैं तो उसका पालन करें। रिपोर्ट देखकर स्वयं दवा शुरू करने या बंद करना उचित नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और थायराइड जैसे कई शब्द लिखे होते हैं। इनके साथ कुछ अंक और सामान्य सीमा भी दी जाती है। इनका अर्थ समझे बिना केवल अंकों को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। उदाहरण के लिए, शुगर की रिपोर्ट समझने के लिए यह जानना जरूरी

0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि रिपोर्ट सामान्य होते हो क्या आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग जांच करवाते हैं और रिपोर्ट सामान्य आने पर मान लेते हैं कि अब कोई बीमारी है वो हो ही नहीं सकती, लेकिन यह समझना श्रोता साथियों पूरी तरह सही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: किसी जाँच की सामान्य रिपोर्ट यह बताती है कि उस जाँच में मापा गया परिणाम निर्धारित सीमा के भीतर है, लेकिन इससे श्रोता साथियों हर तरह की बीमारी की संभावना समाप्त होना नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को लगातार पेट में दर्द हो रहा है और उसकी जांच एक सामान्य आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पेट दर्द का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर जरूरत के अनुसार दूसरी जांच या प्रशिक्षण की सहायता दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह श्रोता साथियों अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान, चक्कर, कमजोरी या सांस फूलने जैसी समस्याएं हो रही है तो केवल एक सामान्य रिपोर्ट के आधार पर इन लक्षणों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि कोई परेशानी बनी रहती है, बढ़ती जाती है या बार बार होती है अंजलि जी, तो हमें डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए। दूसरी ओर श्रोता साथियों अगर रिपोर्ट सामान्य है और

0: है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रिपोर्ट की चीजों को हमें ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, तो श्रोता साथियों, रिपोर्ट में कोई परिणाम सामान्य सीमा से बाहर आने पर घबराने की जरूरत नहीं होती है। कई बार भोजन, दवाइयों या दूसरी परिस्थितियों के कारण भी जाँच के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए और उनकी सलाह ले। डॉक्टर जरूरत के अनुसार दोबारा जाँच कर सकता है, उपचार या जीवन शैली में बदलाव की सलाह भी दे सकता है। यदि रिपोर्ट में किसी गंभीर परिणाम के लिए तुरंत संपर्क करने का निर्देश दिया गया है तो हमें देर नहीं करनी है। सही समय पर सलाह लेना स्वास्थ्य की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डॉक्टर रिपोर्ट के साथ साथ व्यक्ति की उम्र, लक्षण, पुरानी बीमारियों और चल रही दवाइयों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे उन्हें रिपोर्ट का सही अर्थ समझने और आगे की देखभाल तय करने में मदद मिलती है। डॉक्टर के पास जाते समय पुरानी रिपोर्ट और दवाइयों की जानकारी भी साथ रखें, इससे स्वास्थ्य में आए बदलावों को समझना आसान हो सकता है। याद रखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट या दवा के आधार पर अपना उपचार हमें तय नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें परिवार की भूमिका की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में परिवार एक दूसरे की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण सहारा होते हैं। जब घर में कोई व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच होती है और रिपोर्ट आती है तो परिवार के लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई बार श्रोता साथियों घर में बुजुर्गों की रिपोर्ट लेकर आते हैं लेकिन उनमें लिखे जो शब्द हैं वो हमें समझ नहीं आते। कुछ लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है तो कुछ लोगों को डॉक्टर से सवाल पूछने में संकोच होता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों परिवार के किसी सदस्य को उसके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट को समझने में मदद करनी चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों को से बताना चाहिए। अगर परिवार में किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में कोई बदलाव आता है साथियों, तो उसे डांटने या डराने के बजाय सहयोग देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर अंजलि जी उदाहरण के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, अगर किसी बुजुर्ग की शुगर बढ़ी हुई आती है तो उन्हें यह कहकर परेशान नहीं करना है कि आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा इसलिए ऐसा हुआ है। इसके बजाय श्रोता साथियों उनकी दिनचर्या और खान पान की जरूरत के अनुसार हमें बदलाव करने में उनकी मदद करनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रिपोर्ट देखकर खुद ही बीमारी तय करना, बिना सलाह के दवा लेना और किसी दूसरे व्यक्ति की दवा इस्तेमाल करना गलतियां हैं। इसी तरह रिपोर्ट में परिणाम सामान्य आने पर यदि परेशानी बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें और न ही उसकी मात्रा बदलें। रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर पुरानी रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाएं। सही जानकारी और उचित सलाह से अनावश्यक चिंता और गलत उपचार से बचा जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं परिवार के सभी सदस्यों की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी जांच को नजरअंदाज कर देती हैं। लगातार कमजोरी या दूसरी परेशानी होने पर जांच और चिकित्सीय सलाह को टालना नहीं चाहिए। महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछने और सही जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। बुजुर्गों और बच्चों की रिपोर्ट को उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार समझना जरूरी है। बच्चों की सामान्य जांच सीमाएं वयस्कों से अलग हो सकती हैं, इसलिए परिवार के हर सदस्य की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह के अनुसार देखभाल करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जांच हमारे शरीर की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है, लेकिन श्रोता साथियों स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोजमर्रा की आदतें हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में अपनी जरूरत के अनुसार दालें, अनाज, हरी सब्जियाँ, फल और जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ है उन्हें हमें शामिल करना चाहिए। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पर्याप्त पानी पीना है, नींद पूरी लेनी है और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तंबाकू और जो दूसरे जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे हमें दूरी बनानी है। अगर कोई व्यक्ति श्रोता साथियों पहले से बीमार है तो उसके खान पान और व्यायाम में बदलाव के लिए हमें डॉक्टर से उचित सलाह हमें लेनी है। साथ ही साथियों किसी एक जाँच की रिपोर्ट को देख कर यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल खान पान बदलने से हर समस्या है वो ठीक हो जाएगी। कुछ परिस्थितियों में दवा या दूसरे के इलाज की जरूरत हो सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों स्वास्थ्य जांच करवाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसकी रिपोर्ट को सही तरीके से समझना। रिपोर्ट हाथ में आने के बाद उसे ध्यान से देखें, अपने सवाल पूछें, डॉक्टर से सलाह लें और जरूरत के अनुसार आगे की जांच या उपचार करवाएं। रिपोर्ट देखकर खुद ही बीमारी तय न करें और न ही बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयों में बदलाव करें। आज हम सभी यह बात अपने मन में ठान सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे रिपोर्ट मिलने के बाद उसे समझेंगे, अपने सवाल पूछेंगे और सही सलाह के अनुसार कदम उठाएंगे। जांच करवाना समझदारी है, रिपोर्ट समझना भी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट से न घबराएं, सही सलाह अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये समझा कि जांच करवानी हमारे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों जांच की रिपोर्ट को सही तरीके से समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: रिपोर्ट हाथ में आने के बाद सबसे पहले उसे ध्यान से देखिए, उसमें अपना नाम, जांच की तारीख और दूसरे विवरण है वो हमें जांचने हैं। अगर कोई परिणाम सामान्य सीमा से बाहर दिखाई दे रहा है तो तुरंत घबराने या खुद से ही बीमारी का नाम तय करने की बजाय हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रिपोर्ट को सुरक्षित रखिए, पुराने रिपोर्टों को संभाल कर रखिए और जरूरत पड़ने पर तुलना करने के लिए आप डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं। इंटरनेट पर मिली अधूरी जानकारी के आधार पर दवा हमें शुरू या बंद नहीं करनी है। यदि कोई गंभीर लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा याद रखना है कि रिपोर्ट केवल कागज पर लिखे आंकड़े नहीं होते, वे हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, लेकिन उस जानकारी का सही अर्थ समझना और उसके अनुसार उचित कदम उठाना हमारे लिए जरूरी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ।
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को क्यों न एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावारा मर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम होवे भाई बोनो आप सब हामली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे मनीषा बोन आज आप कार्यक्रम में अपने भाई बोनो ते की बातचीत करवा वाला हो कि जई वक्त आपने बाजार जोनी खड़ाकानी चीजें खरीदो हो तई वक्त घनी वक्त आपने देखो हो कि आपने हाथे ठगी या आपने गलत तोल या माप माते चीजें आ लेते हैं तो आपने देखो हो कि आपने तई वक्त लागे है कि आ चीज आपने कम लगी है पर आपने कई जानकारी नहीं होवाने कारण चुप थी सो नी अगर आपने जानकारी होवे तो आपने इनी शिकायत भी करी सको तो आज आपने इस बात करवा वाला हो कि सामान में कोई ठगी थी गई हो या माप तोल कम शू है तो इनी शिकायत आपने के करी सको
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિષય માટે આપણે ભાઈ બોન કતી કાર્યક્રમ ને માધ્યમ કતી ઘણા આકાની વાતે રેંગા પણ કાર્યક્રમ ની શરૂઆત મે હામળા આગીત ને મોરે કરા આપણી વાતી
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હામળતા રહેશું આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8

0: भाइयों ने बोनो जईवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ू बोनों रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, जीवन में संकट कभी भी आ सकता है। कभी भी तेज बारिश से गाँव में पानी भर जाता है, कभी आग लगने की घटना हो जाती है, तो कभी आंधी तूफान या किसी अन्य के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल,
1: ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती होती है घबराहट पर काबू रखना और सही निर्णय लेना। यदि संकट के समय लोग कशिश डर कर इधर उधर भागने लगे, अफवाहों पर विश्वास करें या एक दूसरे की मदद करने के बजाय केवल अपनी चिंता करें, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि गाँव के लोग पहले से तैयार रहें और मुसीबत आने पर मिलजुल कर उसका सामना करें। हम यही बात करेंगे कि संकट के समय हमें घबराना नहीं है, किस तरीके से गांव के लोग और हम सभी मिलकर तैयारी और मदद एक दूसरे की कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस विषय को लेकर श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या ना शुरुआत यहाँ पर पहले एक प्यारे से गीत के साथ करें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि संकट के समय हमें घबराना नहीं है, बल्कि ऐसे में गांव के लोग मिलकर तैयारी और मदद कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कभी सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी अचानक ऐसी परेशानियां सामने आ जाती है अंजलि जी, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी श्रोता साथियों, तेज बारिश से गांव में पानी भर जाता है तो कभी सूखे के कारण फसल खराब हो जाती है, तो कभी आग लगने, सड़क दुर्घटना या किसी दूसरी आपदा के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां जो होती है वो किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे गाँव को प्रभावित कर सकती है। हम जैसा कि

0: लोग एक दूसरे को भरोसा दिलाएं और सही जानकारी साझा करें तो कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी से काम लिया जा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, किसी भी संकट का सामना करने के लिए केवल घटना के बाद कदम उठाना पर्याप्त नहीं है, गांव में पहले से तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है। ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वयं सेवक और युवा समूह, महिला समूह और अन्य ग्रामीण मिलकर यह तय कर सकते हैं कि आपदा के समय कौन क्या जिम्मेदारी निभाएगा। गांव में सुरक्षित स्थानों की पहचान की जानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि बाढ़, आग या तूफान जैसी स्थिति में कहां जाना सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर किससे संपर्क करना है, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाओं को कैसे बुलाना है और परिवार के सदस्य बिछड़ जाए तो कहां मिलना है।
1: बिल्कुल,
0: इनकी जानकारी भी पहले से हमें होनी चाहिए। इसके साथ ही कशिश, जरूरी फोन नंबर, टॉर्च, बैटरी, प्राथमिक उपचार का सामान, पीने का पानी, सूखा भोजन और आवश्यक दवाइयां तैयार रखनी चाहिए। इन छोटी छोटी तैयारियों से संकट के समय होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि श्रोता साथियों, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समझदारी, तैयारी, आपसी सहयोग और सही प्रबंधन से उसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के लोगों का आपसी जुड़ाव, सहयोग की भावना, सामूहिक श्रम और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की परंपरा।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, यदि यही ताकत सही योजना और तैयारी के साथ जुड़ जाए तो गांव किसी भी संकट का बेहतर ढंग से कह सकते हैं कि सामना कर सकता है। भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहेंगे कि जब कोई अचानक दुर्घटना होती है तो हमारे मन में डर पैदा होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल,
1: तेज बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने लगे, खेतों में पानी भर जाए, गांव में आग लग जाए या तेज तूफान की चेतावनी मिले तो लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हो जाते हैं अंजलि जी। लेकिन उस समय सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें और सोच समझ कर कदम उठाएं।
0: बिल्कुल,
1: घबराहट में कोई भी व्यक्ति बिना रास्ता देखे भाग सकता है, अफवाह सुनकर गलत दिशा में जा सकता है या अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में देर कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गाँव की सबसे बड़ी ताकत उसका आपसी सहयोग होता है। जब कोई संकट आता है तो हर व्यक्ति अकेले कभी समस्या का सामना नहीं करता, लेकिन यदि पूरा समुदाय एकजुट होकर काम करता है तो मुश्किल समय में लोगों को राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि भारी बारिश के कारण किसी बस्ती में पानी भरने लगे तो ग्रामीण शासन की चेतावनी पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाएं। बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और बीमार लोगों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करें, लेकिन तेज बहाव वाले पानी में उतरकर या किसी असुरक्षित रास्ते से गुजरकर दूसरों को बचाने का जोखिम न लें। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित बचाव दल और संबंधित अधिकारियों की सहायता लेनी चाहिए। यदि किसी घर में आग लग जाए तो तुरंत लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, दूसरों को सूचना देने और अग्निशमन सेवा को बुलाने में सहयोग करें। बिजली के तारों, धुएं और आग के पास जाने से बचें। गांव के लोग मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संकट में कोई परिवार सहायता से वंचित न रह जाए।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो साथियों, संकट का मतलब केवल कोई बड़ी आपदा नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें तुरंत सहायता और समझदारी की हमें जरूरत होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि किसी गांव में अचानक तेज बारिश होने लगे, रास्तों पर पानी भर जाए, किसी किसान के खेत में आग लग जाए अंजलि जी, किसी घर में अचानक कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े, किसी एक दुर्घटना में लोग बहुत ज्यादा अधिक तरीके से घायल हो जाएं, किसी परिवार का आग से प्रभावित हो जाना, ये सभी श्रोता साथियों ऐसे परिस्थितियां हैं जिनमें समय पर मदद मिलना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मन शांत रहेगा तो हम अच्छी तरीके से सोच पाएंगे कि हमें किस प्रकार से इस संकट का सामना करना है।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है श्रोता साथियों, हम बात कर रहे हैं कि संकट के समय हमें घबराना नहीं है, बल्कि गांव के लोग मिलकर ऐसे में तैयारी और प्रबंधन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: गीत से पहले जैसा कि अंजलि जी हम जान रहे थे कि संकट के समय घबरा कर नहीं बल्कि धैर्य से हमें काम लेना चाहिए, यही अगर बात करें कि संकट आने से पहले तैयारी करना क्यों जरूरी है, तो श्रोताओं, किसी भी संकट से निपटने का एक अच्छा तरीका है, वो है उसके आने से पहले तैयारी करना। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कोई आपदा आएगी तब देख लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी सोच नुकसान आप में बढ़ा सकती है। संकट के समय बाजार बंद हो सकते हैं, सड़कें टूट सकती है, मोबाइल सेवा प्रभावित हो सकती है और अस्पताल तक पहुंचना भी हमारे लिए कठिन हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अंजलि जी, गांव के लोगों को पहले से मिलकर इस बारे में योजना बनानी चाहिए।
1: जी हाँ कशिर, संकट के समय गलत जानकारी में भी बड़ी समस्या बन सकती है। कई बार बिना पुष्टि के कोई संदेश या खबर फैला दी जाती है, जिससे लोग डर जाते हैं और अनावश्यक भीड़ जमा हो जाती है। इसलिए गाँव के लोगों को चाहिए कि किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करें। मौसम विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। यदि किसी क्षेत्र को खाली करने का निर्देश दिया गया है तो उसे गंभीरता से लें। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर निर्णय हमें नहीं लेना है। श्रोता साथियों, गांव के जागरूक नागरिक, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वयं सेवक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सामुदायिक रेडियो में भी ऐसी परिस्थितियों में लोगों को सावधानी, सुरक्षा और उपलब्ध सहायता के बारे में जागरूक करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। कह सकते हैं कि संकट के समय बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। बच्चों को पहले से सिखाया जाना चाहिए कि किसी आपदा स्थिति में हमें घबराना नहीं है, सुरक्षित स्थान पर जाना है और अपने परिवार और भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता लेनी है। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि संकट के समय अनजान जगह पर अकेले न जाएं और किसी खतरनाक वस्तु को छूने की कोशिश न करें। इसी तरह बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। गांव में ऐसे परिजनों की पहचान पहले से की जा सकती है जिन्हें आपदा के समय अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। सहायता करते समय उनकी गरिमा और निष्ठा का सम्मान करना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: किसी जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी का तमाशा बनाने के बजाय उसकी मदद करना ही सच्ची सामुदायिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि संकट आने पर अक्सर लोग समझ नहीं पाता कि सबसे पहले करना क्या है। कोई इधर उधर भागने लगता है साथियों, कोई बिना पूरी जानकारी के दूसरों को खबर देने लगता है, तो कोई डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में परेशानी और भी बढ़ जाती है, इसलिए संकट आने के बाद ही तैयारी करने के बजाय हमें पहले से कुछ जरूरी बातें तय करनी चाहिए, जिससे गांव में आपात स्थिति में किसे सूचना देनी है, गांव के जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने में कौन मदद कर सकता है, साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को सुरक्षित स्थान पर कौन पहुंचाएगा, जरूरत पड़ने पर प्रशासन से सतर्क कौन मदद प्रदान करेगा। जब इन बातों की जानकारी पहले से होगी तो संकट के समय लोगों के इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सहायता जल्दी मिल सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, गांव में संकट से निपटने के लिए सामूहिक तैयारी की व्यवस्था बनाई जा सकती है। जैसे कि श्रोता साथियों, ग्राम पंचायत की बैठक में आपदा प्रबंधन पर चर्चा हो, लोगों को जरूरी प्रशिक्षण मिले और समय समय पर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ग्रामीणों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आपात स्थिति में पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं और जिला प्रशासन से कैसे संपर्क करना है। स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया जा सकता है। कोई व्यक्ति सूचना पहुंचाने में मदद करे, कोई जरूरतमंद परिवारों की पहचान करे और कोई सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के रास्तों की जानकारी रखे, तो बचाव जोखिम वाले कार्य प्रशिक्षित लोगों के ही करने चाहिए।
0: जी।
1: संकट के बाद भी समुदाय की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रभावित जो परिवार है उनको भोजन, साफ सफाई, कपड़े, दवाइयां और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग किया जा सकता है। राहत सामग्री का वितरण निष्पक्ष और जरूरत के अनुसार होना चाहिए ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंच सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही दोस्तों, जब अचानक कोई परेशानी आती है तो मन में डर पैदा होना स्वाभाविक होता है। अपने परिवार, बच्चों, घर और खेती की चिंता हर किसी को होती है, लेकिन उस समय डर के कारण जल्दबाजी में गलत कदम उठाने के बजाय शांत रहकर परिस्थिति को समझना हमें चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि मान लीजिए कि गांव में अचानक तेज बारिश के कारण पानी भरने लगा है, ऐसी स्थिति में अंजलि जी बिना सोचे समझे पानी से भरे रास्ते पर निकलना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले तो श्रोता साथियों, सुरक्षित स्थान पर रहना प्रशासन की सूचना सुनना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह पहुंचने के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी।
0: इसी तरह अगर किसी घर में आग लग जाए तो वहां भीड़ इकट्ठा करने या वीडियो बनाने के बजाय लोगों को सुरक्षित दूरी पर पहुंचाने और अग्निशमन सेवा को सूचना देने में मदद करनी चाहिए। यदि आग फैल रही है तो उसे बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में भी हमें नहीं डालनी है, बल्कि हमें प्रशासन का कह सकते हैं कि उनके जो निर्देश है उनका पालन करना है।
1: बिल्कुल कशिर, संकट हमारे जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे हमेशा बच पाना संभव नहीं होता, लेकिन सही तैयारी और सामूहिक प्रयासों से उनके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: किसी गाँव की असली मजबूती केवल उसके संसाधनों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की एकजुटता, समझदारी और संवेदनशीलता से पहचानी जाती है। जब लोग एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं तभी समुदाय सुरक्षित और मजबूत बनता है। हमें यह समझना होगा कि संकट के समय केवल साहस दिखाना पर्याप्त नहीं है बल्कि सही जानकारी, सुरक्षित निर्णय और जिम्मेदार व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। किसी की मदद करने का अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं को खतरे में डाल दें, बल्कि समझदारी से सहायता पहुंचाएं और जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित बचाव दल की मदद लें। यही जागरूक नागरिक होने की पहचान है। आइए श्रोता साथियों, हम अपने गाँव में ऐसी व्यवस्था बनाने का संकल्प ले जहां हर व्यक्ति को सुरक्षा की जानकारी हो, हर परिवार आपात स्थिति के लिए तैयार रहे और किसी भी मुसीबत में कोई अकेला ना पड़े। हम अपने बच्चों को सुरक्षा के तरीके सिखाएं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का ध्यान रखें, अफवाहों के बजाय सही जानकारी पर भरोसा रखें। याद रखिए कि संकट के समय घबराहट समस्या को बढ़ाती है जबकि तैयारी, समझदारी और एकजुटता समाधान का रास्ता दिखाती है। जब पूरा परिवार साथ खड़ा होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना भी आसान हो जाता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये हमारी बातें यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी यहाँ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी जी।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीधे में भर लूंगा।
3: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लूंगी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी गांव की पहचान केवल वहां की सड़कों, घरों और सुविधाओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि कठिन समय में वहां के लोग एक दूसरे के साथ किस तरह खड़े होते हैं। जब किसी परिवार पर अचानक मुसीबत आती है, तब उसे केवल आर्थिक सहायता की ही नहीं बल्कि भरोसे, सहयोग और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में पड़ोसियों का हाल पूछना, जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाना और लोगों को सही जानकारी देना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार समय पर मिली छोटी सी सहायता किसी बड़ी परेशानी को बढ़ने से रोक सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हमें अपने समुदाय में ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। आपदा की तैयारी केवल प्रशासन या कुछ चुनिंदा लोगों का काम नहीं होता है कशिश, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका होती है। ग्रामीणों को अपने आसपास के जोखिमों को पहचानना चाहिए, सुरक्षित रास्तों और सहायता उपलब्ध कराने वाली सेवाओं की जानकारी रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करनी चाहिए। जब लोगों को पहले से पता होता है कि परेशानी के समय क्या करना है और किससे संपर्क करना है, तो वे अधिक समझदारी से निर्णय ले पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संकट के समय किसी व्यक्ति की परेशानी का मजाक न बनाया जाए, उसकी मजबूरी का फायदा न उठाया जाए, सहायता देने में भेदभाव न किया जाए। राहत और सहयोग का लाभ उन्हीं लोगों तक प्राथमिकता से पहुंचाना चाहिए
1: जी हाँ,
0: जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि किसी परिवार का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है, तो समुदाय के लोग उसकी जरूरतों को समझकर उचित सहायता जुटाने में सहयोग कर सकते हैं। इस तरह का व्यवहार लोगों के बीच विश्वास बढ़ाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत भी बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी श्रोता साथियों, हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति अकेले सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जब पूरा गांव मिलकर काम करता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए अंजलि जी, गांव के लोगों को अपनी क्षमता और अनुभव के अनुसार जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। युवा वर्ग सूचना पहुंचाने, सुरक्षित रास्तों की जानकारी देने और जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित बचाव कर्मियों की सहायता करने में मदद दे सकते हैं। महिलाएं जो है वह परिवारों की आवश्यकताओं, बच्चों, बुजुर्गों, भोजन, स्वच्छता और जरूरी सामान की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसान जो है वह अपने अनुभव के आधार पर मौसम, जल भराव, खेतों में पशुओं की सुरक्षा और छोटी जो जुड़ी जानकारियां होती है उन्हें साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक बच्चों को आपदा के बचाव के तरीके समझा सकते हैं। दोस्तों, ग्राम पंचायत स्थानीय संसाधनों की पहचान करने, प्रशासन से संपर्क बनाए रखने और राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही ये भी जरूरी है कि गांव में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों, अकेले रहने वाले बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
0: जी हाँ।
1: संकट के समय सबसे पहले उन लोगों तक सहायता पहुंचाने की योजना बनाई जाए जिन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में अधिक कठिनाइयां हो सकती है।
0: बिल्कुल कशिश।
1: अंजलि जी, गांव के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये काम केवल सरकार का या किसी समुदाय का ही नहीं है, बल्कि केवल यह सबकी जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और बचाव दलों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय लोगों का सहयोग भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ कशिश, एक जागरूक समुदाय वही है जो केवल संकट आने के बाद सक्रिय न हो बल्कि सामान्य दिनों में भी अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने का प्रयास करे। गांव में समय समय पर बैठकें आयोजित करना, सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करना, आपातकालीन संपर्क नंबर उपलब्ध कराना और बचाव संबंधित अभ्यास कराना उपयोगी कदम है। युवाओं को जिम्मेदार स्वयं सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
1: हाँ।
0: वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के अनुभवों को भी सामुदायिक योजना में महत्व दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति की भागीदारी से ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सहायता पहुंचाने में अनावश्यक देरी न हो और लोगों को सही दिशा में जगह मिल सके।
1: बिल्कुल।
0: हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने गांव को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसे सहयोगी समुदाय के रूप में विकसित करेंगे जहां कठिन समय में कोई व्यक्ति खुद को असहाय महसूस न करे।
1: बिल्कुल।
0: हम दूसरों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएं और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता के लिए आगे आएं। संकट में सबसे बड़ा योगदान केवल बड़े संसाधन उपलब्ध कराना नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना और इंसानी अहमियत का परिचय देना है। जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक, जिम्मेदार और सहयोगी बनेगा, तब समुदाय की संकटों से निपटने की क्षमता भी मजबूत होगी। यही सुरक्षित, संवेदनशील और आत्मनिर्भर गाँव की वास्तविक पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही गाँव में मॉक ड्रिल और की प्रशिक्षण की भी जरूरत है। जैसे किसी आपदा के समय क्या करना चाहिए, केवल सुन लेने से पर्याप्त नहीं है, हमें उसका अभ्यास भी करना होगा। ग्राम पंचायत, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से समय समय पर आपदा संबंधित अभ्यास आयोजित किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि गाँव में बाढ़ का खतरा है तो लोगों को सुरक्षित रास्तों और ऊंचे स्थानों की जानकारी दी जा सकती है। यदि आग लगने का खतरा है तो आग लगने की स्थिति में सुरक्षित बाहर निकलने और अग्निशमन सेवा को सूचना देने का अभ्यास भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों कि बिना प्रशिक्षण के किसी घायल व्यक्ति को उठाने, तेज बहाव में उतरने, बिजली के तारों को छूने या आग में प्रवेश करने का प्रयास हमें नहीं करना है।
0: जी जी,
1: प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों को जोखिम में डालना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से सहायता करने योग्य बनाना है।
0: बिल्कुल,
1: यदि गाँव में समय समय पर अभ्यास होगा अंजलि जी, तो संकट समय लोग अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि संकट के समय हमारी तैयारी और निर्णय लेने की क्षमता ही यह तय करती है कि हम परिस्थिति का सामना कितनी मजबूती से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसे जरूरी है कि हम मुसीबत को केवल अचानक आने वाली घटना मानकर न छोड़ें, बल्कि उससे पहले अपनी सुरक्षा के उपायों पर गंभीरता से विचार करें।
1: जी हाँ,
0: में छोटी छोटी सावधानियों को अपना कर बड़े नुकसान की आकांक्षा को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कशिश, बिजली को कम किया जा सकता है। बिजली के जो खराब तारे हैं उनको समय पर सूचना देकर, जल भराव वाले रास्तों की पहचान करके, आग से बचाव के उपाय की जानकारी रखना और मौसमी संबंधित चेतावनियों को गंभीरता से लेना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कई बार संकट के दौरान सबसे बड़ी परेशानी संसाधनों की कमी से ज्यादा सही समय पर निर्णय न ले पाने के कारण होती है।
1: जी हाँ,
0: लोगों को यह स्पष्ट न हो कि किस परिस्थिति में किस विभाग से संपर्क करना है, कहाँ सुरक्षित जाना है और परिवार के सदस्यों को कैसे सूचित करना है, तो कीमती समय नष्ट हो सकता है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपनी जरूरतों के अनुसार एक सरल आपातकालीन योजना बनानी चाहिए। इसमें जरूरी संपर्क नंबर, परिवार के सदस्यों के मिलने का निर्धारित सुरक्षा स्थान और आवश्यक दस्तावेज, दवाइयों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था शामिल हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के समय सहायता पहुंचाने में जिम्मेदारी और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: बिना जानकारी के भीड़ लगाना, बचाव कार्य में बाधा डालना या खतरनाक स्थानों पर वीडियो बनाने के लिए जाना नुकसानदायक हो सकता है। हमें ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए और बचाव कर्मी को अपना कार्य करने देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी घटना की जानकारी मिले तो उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाएं और स्वयं वही सहायता करें जिसके लिए आप सुरक्षित और सक्षम हो। हमें ये भी समझना होगा कि संकट का प्रभाव सभी परिवारों पर एक जैसा नहीं पड़ता। कुछ परिवारों के पास सुरक्षित स्थान, वाहन और आवश्यक सामान उपलब्ध हो सकते हैं श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जबकि कशिश कुछ परिवारों के लिए सुरक्षित जगह तक पहुंचना भी कठिन हो सकता है। ऐसे में समुदाय को अपनी सहायता व्यवस्था इस तरह बनानी चाहिए कि सबसे अधिक जोखिम में रहने वाले लोगों की जरूरतों पर पहले ध्यान दिया जाए। जैसे कि आर्थिक स्थिति, सामाजिक पहचान और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर मदद में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रोता साथियों, हमें याद रखना है कि सुरक्षित गांव का निर्माण केवल किसी एक संस्था या व्यक्ति के प्रयासों से नहीं होता। इसके लिए जागरूक नागरिक, जिम्मेदार नेतृत्व, सक्रिय ग्राम पंचायत और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय जरूरी है। जब गांव के लोग समस्याओं को समय रहते पहचानेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देंगे, तभी संकट का सामना करने की मजबूत क्षमता विकसित होगी। तैयारी हमें सतर्क बनाती है, सही जानकारी हमें उचित निर्णय लेने में मदद करती है और सामूहिक जिम्मेदारी हमें कशिश कठिन परिस्थितियों से उभरने की शक्ति देती है। यही सोच हमारे समुदाय को अधिक सुरक्षित, सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना कि संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य रखना, सही जानकारी प्राप्त करना, पहले से तैयारी करना और गांव के लोगों का मिलकर काम करना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही दोस्तों हमने ये भी समझा कि आपदा प्रबंधन केवल राहत बांटने का नाम नहीं है, इसमें संकट से पहले तैयारी, संकट के दौरान सुरक्षा और बचाव, साथ ही संकट के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण तीनों शामिल है। ऐसे में हम सबको मिलकर ऐसे गांव का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति व्यक्ति जागरूक भी हो, हर परिवार तैयार हो और संकट के समय कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि गांव की असली ताकत उनके पक्के मकानों या बड़ी सड़कों में नहीं अंजलि जी, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की एकता, समझदारी और सहयोग में होती है।
0: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: इसके साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

बहनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ढेर सारी फरमाइशें रहती हैं,

0: तो बढ़ते हैं श्रोता साथियों फरमाइश के सिलसिले को की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम ही दिल जले गीत के बोल हैं जिसके आने से। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन, सोगा धमतेरी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राजी यादव, प्रशांत राजी यादव, जंगुताई राजी यादव, कुमारी सचिन, प्रथमेश सरवद और कल्पना जी देशमुख। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल जले गीत के बोल हैं जिसके आने से। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: फूल गलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा
1: नाम

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार की। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ साथ। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजार, नरगिस जी खातून। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजूरवाड़ा उत्तर प्रदेश से। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानी शेख, अमन अफरीदी जी और राधा नामदेव जी। इस गीत के अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चना गुड़ानी, हीरामन शिंडे, पन्नी प्रसिद्धि, प्रतिभा जी। इस गीत के अनुरोध करता है नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर, सोपान निहावकर जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं किशोर वडतकर, शुभम वडतकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार की। गीत के बोल ही यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आयुश्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है इतिहास, गीत के बोल हैं दिल की कलम से। इस गीत की फरमाइश करता है प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशा सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रही है गाजियाबाद से शिषपाल जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर न्यूतन, रामनाथ कश्यप जी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरबे शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। रघुवीर नगर दिल्ली से जुड़ना चाह

दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही दिल की कलम से। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कंसुटवारा से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल हैं चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है शमशिल कमर राही, साहिन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद राजेंद्र जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है मजनू का टीला से मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहिजी मलिक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल ही चलते चलते। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है आवारगी, गीत के बोल हैं बाली उमर ने मेरा क्या हाल कर दिया। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शिंदे सिद्धार्थ जी गोड़ानी। इस गीत की अनुरोध करता है यतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, श्रुपशा जयसवाल, अपनव जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जयसवाल, तृप्ति जी जयसवाल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, राजेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरी जी भाई मरकाम। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आकोट से विनायक भेंडी, श्रीमती मंगला जी भेंडी, विजय शुभम जी, पवन जरिए और सजीव जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत की बोल है बाली उमर ने मेरा क्या हाल कर दिया। तब तक आपसे बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए साथियों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है बेवफा। गीत के बोल ही इश्क छुपता नहीं छुपाने से। इस गीत की फरमाइश करते हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। लाहौरा से डोमेंद्र ने ताम, गणेश्वरी ने ताम, चंचल ने ताम, कामलेश ने ताम, माहिर ने ताम। इस गीत के अनुरोध करता है बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाइटा, दिलीप कुश जी पवार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी गोस्वामी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा जी गोस्वामी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही इश्क छुपता नहीं छुपाने से। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है श्रीरामपुर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल है एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है नासिर शेख, नाशिया नासिर, शाहिद शेख, अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जुमेब जी मुजावर, और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अहमदनगर से नासिर शेन पटेल, अमीना पटेल। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से गंगादीप थांधी, दीप्ता कुमारी थांधी, डॉक्टर प्रियंका थांधी, डॉक्टर प्रशांत थांधी, डॉक्टर प्रियम थांधी, बीबी वामिका, वाणी जी थांधी। वासिम महाराष्ट्र से जुड़े हैं मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा सुरुषी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मजबूर, गीत के बोल हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है श्याम की टी, वंदना की टी, कार्तिक की टी, भाविका जी की टी और की टी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से राम मनकर सुरभिमान कर केदार जी मानकर। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वा से अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक डावर जी, जिया हक डावर जी, मोहम्मद उमर डावर जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। इस गीत के अनुरोध करता है एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मुरादाबाद से माया देवी, ऋतिक और अदिति जी कसाना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से सुभाष गोद्रा, विमला गोद्रा, इंदु पार्वती, हिमांशु जी गोद्रा। इस गीत के अनुरोध करता है शिवानी चौक कटनी से अनिल ताम्रेकार, अमर ताम्रेकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रेकार, रंजक रजक जी, विपिल गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हंसी और यश और सौम्या जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, तरुण चौहान, जयनारायण चौहान, प्रतिजी चौहान। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं बाबा साहेब कणककर, साकरबाई कणककर, परमेश्वरी रोनी, श्रावणेश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं समीद मशरूम, साइना हसन, अगजनाजिया, अदीप और आफिया जी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दादरी गेट भवानी से। फिल्म का नाम है अदालत, गीत के बोल ही तुमसे दूर रहकर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जाधव और संगीता जी जाधव। श्रीरामपुर से जुड़ना चाह रहे डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावली से जुड़ रही है अजय सोनोनी, करिश्मा सोनोनी, अविका सोनोनी, शाइसा जी सोनवनी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश संगे, महेश संगे, प्रजेश संगे, प्रतेश संगे और संगे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका जी दले। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनोने, करिश्मा सोनोने, अविका सोनोने, विशाखा सोनोने जी। सरगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवाश जी वर्मा। पटियाकला दुर्ग से जुड़ रहे हैं संजय कुमार शाहू, सुजिता शाहू, शशंक शाहू, सीमाजी शाहू। राहुल नगर अमरावती से जुड़ना चाह रहे सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, हीरामन शिंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा जी गुड़ाने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही तुमसे दूर रह के। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। इस गीत को आवाज दी है अनुराधा जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ने

चारे ही नितेश कुमार देवगना, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम और कृष्णा जी। इस गीत के अनुरोध करता है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत्रमेश शाहू जी। डुमराव बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अली बा, दानिश अंसारी। बक्सर से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम जी नेताम। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल ही ये धरती चांद सितारे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: बस प्यार रहेगा यहाँ रे।
1: आइए साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट सीन। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, नई दिल्ली से रविंद्र चावड़ा, अमरजीत कौर, स्वीटी जी। इस गीत के अनुरोध करता है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, सयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। यूपी से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, शिवानी शिवाजी चौरासिया। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नादुरा से संतोष बंसी, उषा, अभिषेक जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूला श्रीवास जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका जी रामेकर और रामेकर परिवार के पूरे सदस्यगण जुड़ रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, विजेंद्र अग्रवाल, रानू अग्रवाल, बीबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डाबर जी। जगदल बस्तर से जुड़ना चाह रहे हैं पूनम जी नायडू। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम? क्या हमने कभी विचार किया है? सबका अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए और चोर कहता है यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के श्रृंगार चुरा। धर्म से भरा हृदय धर्ममय सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव होता है जब हृदय में धर्म, अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सु व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा।
3: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत का विषय रहने वाला है, आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी तेज बारिश, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी आग, कभी भूसंकलन या कोई दूसरी आपदा हमारे सामने अचानक चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। श्रोताओं,
0: जी हाँ,
1: ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है घबराना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना। और अगर समाज में कोई वर्ग सबसे तेजी से लोगों तक पहुंच सकता है, नई जानकारी अपना सकता है और दूसरों को भी जागरूक कर सकता है तो वो है हमारे युवा।
0: इसी
1: सोच के साथ आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हम बात करेंगे आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हम पहले एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो दोस्तों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: ऐसे दुनिया जहान में हर जगह हमारे पोस्टर्स होंगे, हर जगह।
1: क्या हुआ?
2: मुझे भारत सक्सेना ने फिल्म के लिए

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपदा के समय युवा कैसे बन सकते हैं समाज के मददगार। अगर बात करें जागृति जी की, आपदा केवल एक घटना नहीं एक सामूहिक चुनौती है, तो हम देखते हैं कि जब अचानक कोई प्राकृतिक या फिर मानव जनित संकट आता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: एक पूरे परिवार, मोहल्ला, गांव या शहर प्रभावित इससे हो सकता है। सड़कें बंद हो सकती है, बिजली और संचार व्यवस्था बाधित हो सकती है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में कठिनाई भी हो सकती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और राहत एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन समाज के स्तर पर जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहीं से युवाओं की भूमिका भी सामने आती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा समाज की ऐसी शक्ति है जागृति जी, जो ऊर्जा, तकनीक, सीखने की क्षमता और लोगों से जुड़ने की क्षमता को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि युवा बिना सोचे किसी जोखिम वाली जगह पर चले जाएं। असली मदद वही है जो सुरक्षित, संगठित और सही जानकारी के आधार पर की जाए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि हम देखते हैं कि आपदा के समय युवा क्या कर सकते हैं, अगर इसको लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो सबसे पहले खुद सुरक्षित रहे, यानी कि आपदा के समय दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: कई बार हम देखते हैं कि हम भावनाओं में आकर तुरंत किसी व्यक्ति को बचाने के लिए खतरे वाली जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मदद करने वाला व्यक्ति खुद घायल हो जाएगा श्रोताओं, तो समस्या और बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवाओं के समझना होगा कि बहादुरी का मतलब खतरे में कूदना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है।
0: जी हाँ,
1: अगर कोई स्थान असुरक्षित है तो वहाँ प्रशिक्षित बचाव दल के आने का इंतजार करना बेहतर है।
0: बिल्कुल,
1: और कहा भी गया है कि पहले सुरक्षा फिर सहायता, यही समझदारी की पहचान है।
0: जी हाँ जागृति जी, अगर इससे के आगे बात करें सही जानकारी को आगे पहुंचाने की, तो आपदा के समय अफवाह बहुत तेजी से फैलती है।
1: बिल्कुल,
0: सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना पुष्टि के कोई संदेश साझा कर सकता है। साथियों, युवा इस स्थिति में जिम्मेदार भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी को ही आगे साझा करना होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए तो सुरक्षित स्थान कहाँ है, राहत शिविर कहाँ बनाया गया है और किस नंबर पर सहायता मिल सकती है, या प्रशासन की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं। गलत जानकारी किसी व्यक्ति को खतरे में डाल सकती है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए युवा बने अफवाह फैलाने वाले नहीं, बल्कि सही सूचना पहुंचाने वाले।
1: जी हाँ, जैसा कि कशिश आपने बनाया कि सही जानकारी को हम किस तरह से हमारे श्रोताओं तक पहुँचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही अगर हमारे श्रोता साथियों को बताए कि कभी कुछ ऐसा हो जाए तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग लोगों का किस तरह से ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। आपदा के समय हर व्यक्ति की जरूरत एक जैसी नहीं होती है। छोटे बच्चे डर सकते हैं, बुजुर्गों को चलने में परेशानी हो जाती है और दिव्यांग लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सहायता की जरूरत पड़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: युवा अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान पहले से कर सकते हैं और आपदा की स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहयोग भी कर सकते हैं, बशर्त है कि ऐसा करना सुरक्षित हो। युवाओं की थोड़ी सी संवेदनशीलता कशिश किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों प्राथमिक उपचार की जानकारी भी सीखना जरूरी है, यानी कि हर युवा को बुनियादी फर्स्ट एड और आपातकालीन प्रतिक्रिया की जानकारी सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि कट लगने, मामूली चोट, बेहोशी जैसी परिस्थितियों में प्राथमिक सहायता की जानकारी उपयोग हो सकती है। साथियों, इसके लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, प्रशिक्षित संस्थाओं या फिर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ही प्रशिक्षण लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि गंभीर स्थिति में प्रशिक्षित चिकित्सा सहायता जरूरी है। युवा डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का माध्यम वे बन सकते हैं।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि आपदा के समय हमारे युवा किस तरह से मददगार बन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आगे भी बातें बताएंगे हमारे श्रोता साथियों को, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें चल रही थी कि किस तरह हमारे युवा साथी आपदा के समय मददगार बन सकते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपदा आने के बाद ये सोचना है कि अब कहाँ जाना है कई बार परेशानी बढ़ा देता है, इसलिए तैयारी पहले से होनी चाहिए। युवा अपने गांव, मोहल्ले, समुदाय में जानकारी जुटाने में सहयोग कर सकते हैं कि सुरक्षित स्थान कौन से हैं, आपातकालीन संपर्क नंबर कौन से हैं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, राहत केंद्र या सुरक्षित निकासी मार्ग कौन से हैं, परिवार के सदस्यों से संपर्क न हो पाए तो क्या वैकल्पिक योजना होगी।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि युवा केवल आपदा के समय ही नहीं बल्कि आपदा आने से पहले भी समाज के मददगार बन सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही ऐसे में हमारे युवा साथी सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि आज का युवा डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फोन और इंटरनेट आपदा के समय एक महत्वपूर्ण माध्यम साथियों बन सकते हैं। ऐसे में हमारे युवा साथी सोशल मीडिया के माध्यम से सही चेतावनी, आधिकारिक हेल्पलाइन, सुरक्षित स्थान और जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ पर भी उन्हें सावधानी जरूरी है। जैसे कि किसी घायल व्यक्ति की तस्वीर या निजी जानकारी बिना अनुमति के साझा करना मदद नहीं है, किसी अफवाह को वायरल करना भी मदद नहीं है। जागृति जी, हम कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल जानकारी, जागरूकता और सहायता के लिए होना चाहिए।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि साथियों, आपदा के बाद लोग अक्सर कपड़े, भोजन, पानी और दूसरी जरूरी चीजें दान करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवा इस काम को व्यवस्थित करने में सहयोग कर सकते हैं कशिश, लेकिन बिना जरूरत जाने बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करने के बजाय स्थानीय प्रशासन या राहत संगठनों की वास्तविक जरूरत को समझना अधिक प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा सामग्री को व्यवस्थित करने, पैक करने और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं, जहां ये कार्य सुरक्षित और अधिकृत तरीके से हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि बच्चों में डर कम करने में मदद कर सकते हैं हमारे युवा साथी। स्वयं सेवक बन सकते हैं लेकिन प्रशिक्षण के साथ बने, यानी कि श्रोताओं, युवा समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर स्वयं सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपदा प्रबंधन में केवल उत्साह पर्याप्त नहीं है, प्रशिक्षण, अनुशासन और टीम वर्क भी जरूरी है। युवा स्थानीय प्रशासन, मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं या आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सीख सकते हैं कि संकट की स्थिति में सुरक्षित तरीके से कैसे सहयोग किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोताओं, प्रशिक्षित युवा केवल मददगार नहीं बल्कि सक्षम मददगार बनता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी। साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आपदा समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी चुनौतियां खत्म हो गई। कई परिवारों को घर, रोजगार, शिक्षा और सामान्य जीवन दोबारा शुरू करने में समय लग सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवा बच्चों की पढ़ाई में सहयोग, जागरूकता अभियान, सामुदायिक सफाई, पौधारोपण, स्थानीय स्तर पर जानकारी साझा करने जैसे कई कार्यों में योगदान दे सकते हैं। यानी कि युवाओं की भूमिका आपदा से पहले तैयारी और आपदा के दौरान सुरक्षित सहायता और आपदा के बाद पुनर्निर्माण, तीन चरणों में हो सकती है।
0: बिल्कुल, हम कह सकते हैं कशिश हमारे श्रोता साथियों से कि आपदा के समय सबसे बड़ा हथियार केवल संसाधन नहीं बल्कि तैयारी और जागरूकता होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी गांव का युवा पहले से जानता है कि आपदा की स्थिति में परिवार को क्या करना है, किससे संपर्क करना है और सुरक्षित स्थान कहाँ है, तो संकट के समय अपने परिवार और समुदाय के लिए मजबूत सहारा बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आप कल्पना कीजिए कि किसी गांव के कुछ युवा मिलकर अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वे लोगों को आपदा से बचाव के बारे में बता रहे हैं, परिवार को आपातकालीन संपर्कों की जानकारी दे रहे हैं, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रशासन के साथ समन्वय करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे युवा केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सुरक्षा की एक मजबूत कड़ी बन सकते हैं। ये भावना हमें बताती है श्रोताओं कि समुदाय की ताकत केवल बड़ी मशीनों या संसाधनों में नहीं बल्कि जागरूकता और जिम्मेदार लोगों में भी होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो ऐसे में हमारे युवा साथियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि साथियों, हम आपदा के समय घबराएंगे नहीं, हम अफवाह नहीं फैलाएंगे, हम सही जानकारी साझा करेंगे और हम बच्चों और बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरों की मदद करेंगे और आपदा से पहले तैयारी को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। कहा जा सकता है साथियों कि आपदा कभी बताकर नहीं आती, लेकिन उससे निपटने की तैयारी हम पहले से कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, वे आज के समाज की सक्रिय शक्ति भी है। उनकी ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे जागृति जी, तो वही ऊर्जा किसी मुश्किल समय में किसी परिवार के लिए सहारा, किसी बच्चे के लिए हिम्मत और पूरे समुदाय के लिए उम्मीद बन सकती है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, अगली बार जब हम आपदा शब्द सुने तो केवल खतरे की कल्पना न करें उसके साथ एक और शब्द याद रखें, तैयारी। क्योंकि आपदा के समय जो युवा सुरक्षित सोचता है, सही कदम उठाता है और दूसरों का हाथ थामता है, कशिश वही सच्चे अर्थों में समाज का मददगार युवा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे, आपदा के समय युवा सिर्फ मदद करने वाले हाथ नहीं बल्कि जागरूकता, तैयारी और जिम्मेदारी की मजबूत कड़ी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि बातें भी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोर नी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनके घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, बच्चे हमारे घर की रौनक और देश के भविष्य हैं। हम उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, बड़ों का सम्मान करना बताते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हम उन्हें यह भी सिखाते हैं कि अगर अचानक बाढ़ आ जाए, आग लग जाए या कोई दूसरी आपदा आ जाए तो उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? श्रोता साथियों, आपदा कभी बताकर नहीं आती। ऐसे समय में घबराने के बजाय सही जानकारी और पहले से मिली सीख बच्चों की सुरक्षा में मदद कर सकती है। इसलिए आज का हमारा रेडियो नाटक इसी विषय पर आधारित है। जी हाँ श्रोता साथियों, आपदा के समय बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को पहले क्या सिखाना चाहिए, तो श्रोता साथियों इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय बताया ही था कि आज हम बात करने वाले हैं आपदा के समय बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को पहले से क्या सिखाना है, इस विषय को लेकर। मैंने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहा था कि आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसे समय में घबराने के बजाय सही जानकारी और पहले से मिली सीख बच्चों की सुरक्षा में अधिक मदद कर सकती है। तो आइए साथियों, सुनते हैं कमला और रमा की बातचीत के माध्यम से एक ऐसी कहानी जो हर परिवार के लिए जरूरी है।
1: अरे रमा बहन, आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाथ में ये कागज और थैला लेकर क्या तैयारी कर रही हो?
2: अरे राम राम कमला बहन, मैं तो आंगनवाड़ी केंद्र जा रही हूँ। वहाँ बच्चों और उनके माता पिता को आपदा के समय सुरक्षा के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई जाएंगी। मैंने सोचा जाने से पहले तुम्हें भी बताती चलूं।
1: आपदा के समय सुरक्षा? अरे बहन, ऐसी बातें तो बड़े लोगों को सीखनी चाहिए, बच्चों को इन सब बातों की क्या जरूरत है? उन्हें तो बस पढ़ाई करनी चाहिए और खेलना चाहिए।
2: यही तो हम अक्सर सोच लेते हैं कमला बहन, लेकिन जरा सोचो, अगर घर में अचानक से आग लग जाए या तेज बारिश से पानी भरने लगे, और अगर बच्चा अकेला हो घर में और उसे कुछ समझ ना आए, तब क्या होगा?
1: रमा बहन, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन बच्चे तो छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, ऐसे में उन्हें क्या समझ आएगा?
2: ऐसे में बच्चों को डराना नहीं है, बल्कि हमें उन्हें तैयार करना है। जैसे कि हम उन्हें सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना सिखा सकते हैं, ठीक वैसे ही आपदा के समय सुरक्षित रहने के तरीके भी सिखाए जा सकते हैं।
1: अच्छा, तो सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए?
2: सबसे पहली बात, खतरे के समय घबराकर इधर उधर भागना नहीं है। बच्चे को अपनी उम्र और स्थिति के अनुसार सुरक्षित कदम उठाने चाहिए और किसी भरोसेमंद बड़े की बात सुननी चाहिए। लेकिन ये भी समझाना होगा बहन कि अगर आसपास कोई बड़ा मौजूद न हो तो वह क्या करे।
1: हाँ, ये बात तो जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात में कई बार नालों में पानी भर जाता है, बच्चे खेलते खेलते पानी के पास भी पहुँच जाते हैं।
2: बिल्कुल बहन, तुमने सही कहा। बच्चों को पहले ये समझाना चाहिए कि तेज बहाव वाले पानी, भरे हुए नालों, नदियों और बाढ़ के पानी में कभी नहीं उतरना है। पानी कितना गहरा है ये ऊपर से देखकर पता नहीं चलता। अगर पानी बढ़ रहा है तो उसके पास जाकर देखने या वीडियो बनाने की कोशिश भी हमें नहीं करनी है, ये हमें अपने बच्चों को बताना है।
1: और अगर बच्चा रास्ते में हो और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगे तब
2: उसे सुरक्षित इमारत या पहले से बताए गए सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही पानी से भरे रास्ते को पार नहीं करना है, बिजली के खंभों, गिरे हुए तारों और पानी में डूबे बिजली के उपकरणों से बच्चों को दूर रहना है, और घर पहुंचने की जल्दी में किसी खतरनाक रास्ते पर भी नहीं जाना है। ये सभी बातें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कमला बहन।
1: सही कहा। लेकिन बहन, भूकंप आ जाए तो बच्चों को क्या करना चाहिए? और हमारे बच्चों ने तो भूकंप के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है।
2: हाँ, वो तो सही है, लेकिन बच्चों को अभ्यास के जरिए सिखाना भी हमें चाहिए। अगर वे घर के अंदर हो और भूकंप के झटके लगने लगे तो उन्हें नीचे झुकना है, मजबूत मेज के नीचे सिर और गर्दन को ढक कर पकड़ कर रहना सिखाएं, खिड़कियों, शीशों और भारी अलमारियों से दूर रहना चाहिए, ये भी बताना होगा। साथ ही झटके चलते समय सीढ़ियों की तरफ भागना या लिफ्ट का इस्तेमाल करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है बहन।
1: और जब भूकंप के झटके बंद हो जाए तब?
2: तब सावधानी से बाहर निकलना चाहिए, अगर बाहर जाना सुरक्षित हो तो। क्षतिग्रस्त दीवारों और इमारतों से दूर रहना चाहिए और स्थानीय प्रशासन या फिर बचाव दल के निर्देश मानने चाहिए। साथ ही बहन, बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि बिना अनुमति किसी क्षतिग्रस्त इमारत में वापस नहीं जाना चाहिए।
1: अच्छा, यह तो बहुत काम की बात है। अब आप आग लगने की बात भी बता दो, क्योंकि घर में चूल्हा तो जलता ही रहता है और कई बार बच्चे रसोई में भी आ जाते हैं।
2: ऐसे में हमें अपने बच्चों को साफ साफ समझाना चाहिए कि माचिस, लाइटर, जलते चूल्हे, और बिजली के खुले तारों से दूर रहना है। आग अगर लग जाए तो सामान बचाने या खिलौना उठाने के लिए वापस नहीं जाना है।
1: और मान लो कि कमरे में आग लग गई और धुआं भरने लगे तब?
2: तब बच्चों को तुरंत सुरक्षित निकास की तरफ जाना चाहिए। धुआं हो तो नीचे झुककर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर धुआं ज्यादा जमा हो सकता है। दरवाजा खोलने से पहले यदि संभव हो उसके गर्म होने की जांच किसी सुरक्षित तरीके से उन्हें करनी चाहिए। गर्म दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर रास्ता बंद है बहन, तो सुरक्षित जगह पर रहकर जोर से मदद मांगनी चाहिए और आपातकालीन सेवा को सूचना पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और आग बुझाने के लिए पानी डालना?
2: हाँ बहन, हर आग पर पानी डालना सही नहीं होता। तेल या बिजली से लगी आग पर पानी डालने से खतरा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में बच्चों को आग बुझाने का जिम्मा नहीं देना चाहिए। उनका पहला काम सुरक्षित बाहर निकलना है और मदद बुलाना है।
1: अब समझ में आया कि बच्चों को सिर्फ खतरा बताना नहीं बल्कि उससे बचाने का तरीका सिखाना भी जरूरी है।
2: हाँ कमला, और एक बात बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद अभिभावक का नाम और फोन नंबर भी याद हमें करवाना चाहिए, और साथ ही छोटे बच्चों को घर का पता भी सरल तरीके से याद कराया जा सकता है।
1: लेकिन अगर बच्चा भीड़ में अपने परिवार से पिछड़ जाए तब?
2: तब हम उसे समझाएं कि वह किसी सुरक्षित और पहचानी हुई जगह पर रुके, अगर उसके लिए वहाँ रुकना सुरक्षित हो तो। साथ ही पुलिस कर्मी, बचाव कर्मी या फिर निर्धारित सहायता केंद्र से मदद भी वे मांगे। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाना है, और अगर खतरे वाली जगह पर है तो पहले सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचना चाहिए।
1: सही है रमा बहन, पर आजकल तो बच्चे मोबाइल भी चलाते हैं, क्या उन्हें आपातकालीन नंबर भी सिखाना जरूरी है क्या?
2: बिल्कुल जरूरी है बहन, ये तो भारत में आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ये नंबर और मदद मांगने का तरीका सिखाया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये भी समझाएं कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही करना है, मजाक या खेल में नहीं। आप उन्हें ये नंबर याद दिलवाएं, जैसे कि आप उन्हें बताएं कि आपातकालीन सहायता का नंबर है 112।
1: एक बात और बताओ रमा, अगर बच्चा स्कूल में हो और कोई आपदा आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए?
2: हाँ, स्कूल में शिक्षक और सुरक्षा कर्मियों के निर्देश उन्हें मानने चाहिए। बच्चों को स्कूल का सुरक्षित निकास तय, एकत्र होने की जगह और आपातकालीन अभ्यास के नियम भी पता होने चाहिए बहन। साथ ही भगदड़ नहीं करनी है, धक्का नहीं देना है, और किसी को गिरा हुआ अगर वे देखें तो खुद जोखिम लेने के बजाय तुरंत शिक्षक या फिर बचाव कर्मी को उन्हें बताना चाहिए।
1: अच्छा, इसका मतलब है कि घर और स्कूल दोनों ही जगहों पर आपदा से पहले सुरक्षा जरूरी है।
2: बिल्कुल, परिवार को भी मिलकर एक छोटी सी आपदा योजना बनानी चाहिए, जैसे कि घर से सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते कौन से हैं, परिवार के लोग कहाँ मिलेंगे, जरूरत पड़ने पर किस पड़ोसी से मदद मांगनी है, और जरूरी फोन नंबर कहाँ लिखे होंगे।
1: और क्या घर में कोई सामान भी तैयार रखना चाहिए क्या?
2: हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, और वो है एक छोटा सा आपातकालीन बैग, जिसमें पीने का पानी, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, बैटरी, सीटी या कुछ सूखा भोजन, और साथ ही जरूरी संपर्क नंबर। बच्चों की जरूरत के हिसाब से ज्यादा कपड़े या दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी रखी जा सकती है, और इसे हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ जरूरत पड़ने पर आसानी से ये मिल सके, लेकिन खतरे के समय इसे लेने के लिए अपनी जान जोखिम में हमें नहीं डालनी है।
1: लेकिन रमा बहन, हमारी तरफ तो कई घरों में छोटे बच्चे खेतों के पास खेलते हैं, कहीं बिजली के तार पड़े होते हैं, कहीं कुएं या पानी के गड्ढे होते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ सिखाना जरूरी है क्या?
2: जरूर, बच्चों को खुले कुएं, गहरे गड्ढे, टूटे बिजली के तार, मशीनों और खतरनाक जगहों से दूर रहना हमें सिखाना होगा। अगर कहीं खतरा दिखाई दे तो उसे छूने या खुद ठीक करने के बजाय किसी बड़े को बताना है, ये भी हम अपने बच्चों को बताएं।
1: बिल्कुल, लेकिन बच्चों को बार बार खतरे की बातें बताएंगे तो कहीं वे डरने तो नहीं लगेंगे?
2: हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है बहन, बच्चों को डराकर नहीं खेल खेल में हमें सिखाना होगा। जैसे कि उनसे पूछो कि अगर तेज बारिश में रास्ता पानी से भर जाए तो तुम क्या करोगे, फिर प्यार से सही जवाब समझाओ, घर में सुरक्षित निकास का अभ्यास करवाओ, बच्चों की बात सुनो और उनके सवालों का सरल जवाब दो।
1: यानी कि उन्हें यह भरोसा देना है कि मुसीबत आने पर वे मदद मांग सकते हैं और उन्हें अकेले सब कुछ नहीं करना है।
2: बिल्कुल, साथ ही बच्चों को ये भी बताना है कि आपदा आने पर डर लगना स्वाभाविक है, वे रो सकते हैं, घबरा सकते हैं या चुप भी हो सकते हैं। ऐसे समय में बहन उन्हें डांटने के बजाय शांत करना हमें चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना चाहिए।
1: अब तो मैं आज ही अपने बच्चे के साथ बैठकर ये बातें करूंगी, घर का सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगी, जरूरी फोन नंबर लिखकर रखूंगी और उसे बताऊंगी कि खतरे में किससे मदद लेनी है।
2: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात याद रखना बहन कि बच्चों को आपदा से बचाने की जिम्मेदारी केवल परिवार की नहीं होती, स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत और पूरा समुदाय मिलकर बच्चों को सुरक्षित रखने की सीख दे सकता है। समय समय पर अभ्यास होगा तो बच्चे सही कदम उठाने में अधिक सक्षम भी होंगे।
1: सच कहा बहन, हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने और पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके सुरक्षा की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित बच्चा ही निश्चित

जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगना सिखाएं। ये बातें उसकी उम्र के अनुसार सरल भाषा और नियमित अभ्यास के माध्यम से समझाइए। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को हर परिस्थिति का डर सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ही कि उनके मन में सुरक्षा का भरोसा पैदा हो, वे खतरे को पहचान सके और सही समय आने पर मदद मांग सके। माता पिता, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गांव के सभी लोग मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें और अपनी बात को खुलकर रख सकें। क्योंकि श्रोता साथियों, बचपन तभी सच्चा और खुशहाल होता है जब बच्चे के पास सपने देखने की आज़ादी के साथ सुरक्षित रहने की समझ भी हो। इसी प्यारे से संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातें रही, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपने पूर्ण अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणी मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि खेत में फसल विविधता खेती ना जोखिम ने कम करवानी हमज आपणे हरते ले सक। ताजे कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घणा आकानी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो भाई बहनों आप हमरते रहसु आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: मिलेगा
1: बिल्कुल,
0: और कुछ मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको विविधताएं भी मिलेगी। जैसे आपको मान लो कि आपका खेत पूरे में आपने 6 से 7 फसलें लगाई और वो सभी मिलेगी, तो आपको एक परिवार का जो पोषण की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी पोषण की,
1: बिल्कुल,
0: कि आपको अलग अलग चीजें वहां से मिल जाएगी, तो इसलिए हमें लगाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि होता क्या है कि हमारे जो किसान भाई है एक ही खेत में बार बार मिक्स फसल लगाते, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि हर बार हमें खेत बदलना चाहिए और फसलों की जो स्थिति है उसको बदलना चाहिए।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसे हमारे यहाँ पे रबी की हम बात करेंगे अभी, तो वो हमारे यहाँ आंगनी बहुत अच्छी होती
1: है। बिल्कुल सर,
0: जिन किसान भाइयों के पास में पानी है उनके वहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे फिर हमें सोचना होगा कि चना के साथ में क्या लगाना है, चना लगाना है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप हमें बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बीज की विविधता, खेत की विविधता और भोजन की विविधता तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारे किसान भाई बहन खेत की योजना कैसे बनाएं?
0: देखिए, हम बात खेत की योजनाएं करते हैं तो जैसे कि आपके पास में 3 बीघा जमीन है, आपके पास में 3 खेत है, तो होता क्या है कि कभी कभी किसान भाई क्या है एक ही खेत में बार बार एक ही फसल करते हैं, लेकिन आपको उस योजना बनाना जरूरी है कि मुझे इस खेत में इस बार मैंने मक्का की है तो शायद रबी में मैं चना करूं।
1: बिल्कुल,
0: अब वापस आप मक्का करोगे तो उसमें आपकी फसल प्रभावित हो सकती है। दूसरा कि जब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की, तो होता क्या है कि अगर आप एक ही खेत में बार बार करेंगे तो हो सकता है कीट का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिले या वहाँ जो खाद मिट्टी का वो कम हो जाए, तो हमको सारी प्लानिंग सोचनी पड़ेगी कि कितना खाद है, किस खेत में हमने डाला है, किस खेत में हम गेहूं कर सकते हैं, किस में चना कर सकते हैं या किस में अरहर कर सकते हैं, जो भी मतलब, तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर।
0: और इसमें एक भाग ये भी है पानी की उपलब्धता और संसाधन, कि आपके पास में कौन सा खेत है जिसमें पानी अधिक मिल जाएगा आपको, कौन सा है जिसमें बहुत कम मिलेगा, जहाँ बहुत कम मिलेगा वहाँ पे आप कम पानी वाली फसल करो, जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ बहुत ज्यादा जो पानी वाली फसल कर सकते हैं आप, तो इस तरह से आप देख सकते।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई बहन किस तरीके से इसकी योजना बना सकते हैं और फिर उन्हें कार्य करने की जरूरत है, यही सर समुदाय मिलकर किस तरीके से इन सारी चीजों को आगे बढ़ावा दे सकते हैं?
0: देखिए, समुदाय में एक वातावरण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लो कि आपने शुरुआत की कि आपने एक ही खेत में 4-5 फसलें की आपने और अच्छा रिजल्ट आपका रहा परिणाम, तो बाकी जो किसान भाई है समुदाय के उनको आप बता सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो हम जब भी खेती बाड़ी करें तो समुदाय के जो हमारे लोग हैं उनको बैठना चाहिए कि इस बार की परिस्थितियां क्या है, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास में बहुत अच्छा ज्ञान है कि कौन सी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, तो उस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाने के लिए समुदाय स्तर पर हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप पहले से अगर जागरूक हो और अच्छे से आपने काम किया है तो वो जो है चीजें आपको अच्छे से फायदा देगी, क्योंकि आपका प्लान फिक्स होगा, इसके बाद में आपने जो फसलें लगाई वो जो एक योजना के तहत लगाई और योजना के साथ साथ में क्या हुआ कि आपने अपनी जो जलवायु है उसका भी ध्यान रखा।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से ये पूरा प्लान है वो आपको सक्सेस ज्यादा देगा, जबकि आप बिना प्लान के करेंगे तो वो शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल,
0: दूसरी बात ये समुदाय स्तर की हम बात करते हैं, अगर समुदाय पूरा इस तरह से करेगा तो सबका फायदा होगा, अगर 1-2 व्यक्ति कर रहे हैं या उन्हीं के पास ज्ञान है तो शायद सबको देना चाहिए।
1: बिल्कुल सर,
0: तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से उन्हें फसल विविधीकरण की जो चीजें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि खेती के जोखिम को हम कम कर सकते हैं। तो सर जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई हैं, अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक फसल की निर्भरता है उसको कम करना चाहिए, खेत में अपनी विविधताएं बढ़ाएं, मौसम की जो जोखिम है उससे बचेंगे आप, परिवार के खाद्य सुरक्षा होगी और आपकी खेती है वो मजबूत और स्थिर होगी, तो इसके तहत आप इस तरह से आप कर सकते हैं और निश्चित ही है इससे बहुत ज्यादा फायदा है हम लोगों को होगा।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: भाई बोनो सिम के अवड़ा आपड़े वैसे मांगीलाल जी जुड़े तक कहा था ने एने आपड़ा ने बताड़ियो है કે હર્તે આપણને ખેતમાં એક જ ફસલ નથી કરવી, આપણને ઘણા કની ફસલ કરવી હે. ને આ વાતે આપણે ટેમ ટેમ માટે કાર્યક્રમ ખેતીવાડીને માધ્યમ થકી આપને બતાડતો રહો, તાકી આપને ખેતી થકી મળવાવાળી જે આય હે એ આપણે અસલ બનાવીને રાખી શકો. તો આપણે ખેતમાં અલગ અલગ ફસલ કરીને આપણે ક્યારેક કોઈ ફસલ ખરાબ થઈ જા, ક્યારેક પાણીની કમીને કારણે કોઈ ફસલ આમની તેમની પેલી થઈ જા, તો આપણે અલગ અલગ ફસલ કરવી હે. જેમ કે સરે આપણને બતાડ્યું કે ઘઉંને હાથે આપણે સણ કરી શકો, એમ ઘણા કાની ચીજે હે જેને હાથે આપણે અલગ અલગ ચીજે કરીને આપણે ફસલ તકી મળવાવાળા ઉત્પાદનને વધાવી શકો. તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટ પડવાનું. તો સૂટ તો પડ, પણ સાથે પહેલા હમરી લાય કર ગીત ને મોરે પડા સૂટ.

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है आपदा से पहले तैयारी, गांव की सुरक्षा को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोताओं जरा कल्पना कीजिए कि रात का समय है, अचानक तेज बारिश शुरू हो चुकी है, कुछ देर में गांव की गलियों में पानी भरने लगता है, किसी किसान की फसल पर संकट मंडरा रहा है और किसी परिवार को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए।
0: बिल्कुल
1: ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल ये होता है श्रोताओं कि हम क्या करें और कहां जाएं। लेकिन साथियों, अगर गांव के लोगों को पहले से पता हो कि सुरक्षित स्थान कहां है, आपातकाल में किससे संपर्क करना है, जरूरी सामान कहां रखा है और बच्चों और बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित पहुंचाना है, तो यही तैयारी संकट के समय बहुत बड़ी काम आती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहने वाली है, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है आपदा से पहले तैयारी गांव की सुरक्षा को लेकर। तो जैसा कि अंजलि, कुछ बातें हमने गीत से पहले करी भी थी, हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आपदा हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, लेकिन उससे निपटने की तैयारी काफी हद तक हमारे हाथ में होती है। गांव की असली ताकत केवल उसके खेत, घरों और संसाधनों में नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की एकता, समझदारी और सजगता में होती है। जब पूरा गांव मिलकर सुरक्षा की योजना बनाता है अंजलि, तो वो कठिन परिस्थितियों का सामना और अधिक मजबूती से कर सकता है। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे कि आपदा से पहले तैयारी गांव की सुरक्षा। तो श्रोताओं, आइए समझते हैं कि हम अपने गांव को सुरक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इसके लिए हम सभी को सबसे पहले आपदा को समझना है और उसके संकेतों को पहचानना है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार आपदा है क्या। जब कोई प्राकृतिक या मानवीय घटना जनजीवन, घरों, खेतों, पशुओं और सार्वजनिक संसाधनों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है तो वह आपदा का रूप ले सकती है।
0: जी हाँ,
1: प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, भूकंप, आकाशीय बिजली, तेज आंधी, अतिवृष्टि और लू जैसी परिस्थितियां शामिल होती है। वहीं घरों या खेतों में आग लगना, बिजली से जुड़ी दुर्घटना और अन्य आकस्मिक घटना भी गाँव के लिए संकट पैदा कर सकती है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि हमारे ग्रामीण जीवन में प्रकृति का विशेष महत्व है। खेती वर्षा पर निर्भर करती है, पशुओं के लिए पानी और चारे की आवश्यकता होती है, गांव के रास्ते मौसम के कारण प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां आने वाली संभावित आपदाओं को समझना चाहिए। यदि गांव नदी या नाले के पास बसा है तो बाढ़ के खतरे को समझना आवश्यक है। यदि क्षेत्र में श्रोता साथियों अधिक गर्मी बढ़ती है तो पेयजल की व्यवस्था और गर्मी से बचाव की तैयारी जरूरी है। यदि तेज बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं तो वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पहले से होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हमें मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जागृति जी केवल आसमान देखकर मौसम का अनुमान लगाने के बजाय विश्वसनीय सूचनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। याद रखिए कि खतरे की पहचान करना डरना नहीं, बल्कि समझदारी से सुरक्षित रहने की दिशा में पहला कदम है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपदा से पहले तैयारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि श्रोताओं, अक्सर हम किसी घटना के घट जाने के बाद उसके समाधान के बारे में सोचते हैं, नुकसान होने के बाद राहत सामग्री जुटाते हैं, सुरक्षित स्थान खोजते हैं और सहायता के लिए लोगों को बुलाते हैं। लेकिन अगर यही काम हम पहले से कर ले तो संकट के समय हमारी परेशानी कम हो सकती है। मान लीजिए श्रोताओं कि किसी गांव में भारी बारिश की चेतावनी मिली है, अगर गांव के लोगों ने पहले से नालों की सफाई कर दी है, कमजोर रास्तों की पहचान कर ली है और सुरक्षित स्थान तय कर लिए हैं, तो वे अधिक व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। इसके विपरीत अंजलि, हमारे श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी को रास्ते की जानकारी नहीं है, जरूरी सामान तैयार नहीं है और लोगों को ये भी नहीं पता है कि सहायता के लिए किससे संपर्क करना है, तो संकट के समय भ्रम पैदा हो जाता है। आपदा से पहले तैयारी का अर्थ केवल सामान इकट्ठा करना नहीं है दोस्तों, इसमें जानकारी जुटाना, जिम्मेदारियां तय करना, सुरक्षित स्थानों की पहचान करना और समय समय पर अभ्यास करना भी शामिल है। आपदा प्रबंधन से संबंधित सरकारी दिशा निर्देशों में भी जोखिम कम करने, पूर्व तैयारी, समय पर चेतावनी और कई संस्थाओं के बीच समन्वय पर जोर दिया जाता है। इसलिए हर गाँव में चर्चा होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से खतरे हो सकते हैं और हम उनसे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए किसी भी गांव की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्थित योजना बहुत उपयोगी होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये योजना गांव के लोगों की भागीदारी से तैयार की जानी चाहिए ताकि सभी को अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी हो। सबसे पहले ग्राम पंचायत की बैठक में संभावित खतरों पर चर्चा की जा सकती है। गाँव के बुजुर्गों के अनुभव, किसानों की जानकारी और स्थानीय लोगों के सुझाव इसमें मददगार हो सकते हैं। इसके लिए श्रोता साथियों, हमें बाढ़ या जल भराव की आकांक्षा वाले क्षेत्रों को देखना है, सुरक्षित और खुले स्थानों की पहचान करनी है, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन की देखरेख करनी है, गांव से बाहर जाने वाले सुरक्षित रास्तों के बारे में हमें पता होना चाहिए, पेयजल के स्रोत और जरूरी सार्वजनिक सुविधाएं कौन कौन सी है उनका हमें ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे घर या क्षेत्र जहाँ रहने वाले लोगों को आपात स्थिति में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हमें तय करना है कि आपदा की चेतावनी मिलने पर सूचना हमें कौन देगा।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में कौन सहयोग करेगा और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सहायता के लिए हम किससे संपर्क कर सकते हैं। यह भी जरूरी है श्रोता साथियों कि योजना केवल कागज पर न रहे, समय समय पर उसकी समीक्षा हो और मौसम और गांव की परिस्थितियों में बदलाव आने पर उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जा सकते हैं। क्योंकि जागृति जी, गांव की सुरक्षित योजना तभी सफल होगी जब गांव का हर व्यक्ति उसे समझे और उसमें अपनी भूमिका पहचाने।
2: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम परिवार की तैयारी को लेकर भी बताएंगे कि छोटी छोटी सावधानियां परिवार को लेकर हमें किस तरह से बरतनी है, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि आपदा से पहले की तैयारी सुरक्षित तरीके से हमें कैसे करनी है, जिसमें हमने जाना कि सबसे पहले हमें आपदा क्या होती है, उसके संकेतों को समझना है और साथ ही उससे पहले तैयारी क्यों जरूरी है और गांव की अपनी आपदा सुरक्षा योजना हम कैसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ही जागृति जी, अब बात आती है परिवार की तैयारी, छोटी छोटी सावधानी और

0: के समय घबराकर सामान जुटाने की जगह पहले से तैयारी करना और अधिक उपयोगी होगा। जरूरी सामान को समय समय पर जांचते रहना चाहिए ताकि पानी, भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री अनुपयोगी न हो जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें बच्चे और बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा की, तो श्रोता साथियों, किसी भी गांव की सुरक्षा का सही आंकलन इस बात से होता है कि संकट के समय वहां रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है या नहीं। बच्चों को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि आपदा की चेतावनी मिलने पर उन्हें क्या करना है, किस जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाना है और अनजान सूचनाओं पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षकों की मदद से सुरक्षा अभ्यास कराए जा सकते हैं, बच्चों को सुरक्षित रास्तों की जानकारी दी जा सकती है और ये भी बताया जा सकता है कि किसी आपात स्थिति में शिक्षक या परिवार के निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है। तो श्रोता साथियों, कह सकते हैं कि यदि किसी परिवार में कोई अकेला रहता है या उसे चलने फिरने में सहायता चाहिए तो गांव के स्तर पर सहयोग की व्यवस्था बनाई जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसका अर्थ है जागृति जी कि आपदा की तैयारी में केवल सामान्य व्यवस्था नहीं बल्कि हर व्यक्ति की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। सुरक्षित गांव वही है जहां संकट के समय कोई भी व्यक्ति खुद को अकेला महसूस न करे।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही ग्राम पंचायत और समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि समुदाय के लोगों को समझना होगा कि आपदा के समय केवल अपने परिवार की सुरक्षा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को भी समझना होगा। बिना प्रशिक्षण के जोखिम भरे बचाव कार्य नहीं करने चाहिए। बाढ़ के तेज पानी में उतरना, क्षतिग्रस्त बिजली के तारों के पास जाना, असुरक्षित भवन में प्रवेश करना खतरे को बढ़ा सकता है। ऐसे समय में सुरक्षित दूरी बनाए रखना और प्रशिक्षित बचाव दल की सहायता लेना भी जरूरी है। साथ ही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि सही सूचना, चेतावनी और जागरूकता बहुत जरूरी है। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के कारण सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन हर तेजी से फैलने वाली सूचना सही हो ये जरूरी भी नहीं है। कई बार हमें पुरानी घटना का वीडियो नई घटना बताकर साझा कर दिया जाता है, कभी कभी बिना पुष्टि के भी ये संदेश फैल जाता है कि किसी स्थान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऐसी सूचनाएं लोगों में अनावश्यक घबराहट पैदा कर देती है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि सही समय पर मिली सही जानकारी लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए श्रोता साथियों को आपदा के समय घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि समझदारी की दिशा में कदम बढ़ाना है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों बाढ़ की चेतावनी मिले तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पानी से भरे रास्तों या तेज हवा बहाव वाले नालों को पार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आकाशीय बिजली और तेज आंधी के दौरान खुले मैदानों, अकेले खड़े पेड़ और असुरक्षित स्थानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित और पक्के भवन में आश्रय लेना उचित है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ भूकंप आने पर स्थिति के अनुसार सिर और गर्दन को सुरक्षित रखते हुए मजबूत मेज के नीचे झुककर, ढककर, पकड़कर रहने जैसे सुरक्षित उपाय अपनाए जा सकते हैं। झटके रुकने पर क्षतिग्रस्त भवन से सावधानी पूर्वक बाहर निकलना चाहिए यदि बाहर निकलने का रास्ता सुरक्षित हो तो।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ आग लगने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, दूसरों को चेतावनी देने और अग्निशमन सेवा को सूचना देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। धुएं से भरे स्थान में प्रवेश करके सामान निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों इन सभी परिस्थितियों में यह समझना जरूरी है कि हर आपदा के लिए सुरक्षित उपाय अलग हो सकते हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम रेडियो संवाद के बारे में बताएंगे कि श्रोताओं, अब जरा अपने गांव के बारे में आप सोचिए, यदि आज ही भारी बारिश हो जाए या किसी अन्य आपदा की चेतावनी मिल जाए तो क्या हमें पता है कि सुरक्षित स्थान कहाँ है? हमें गांव में पहले से सुरक्षित स्थान तय करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर समय बर्बाद न हो। हमें बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए व्यवस्था भी बनानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों हम कहना चाहेंगे कि हमें पंचायत, स्वास्थ्य केंद्र और आपातकालीन सहायता से जुड़े संपर्कों की सूची भी तैयार रखनी होगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि श्रोताओं, आप सोचिए कि आपके गांव में सुरक्षा के लिए कौन से तीन काम सबसे पहले किए जाने चाहिए। क्या गांव के रास्ते सुरक्षित है? क्या जल निकासी की व्यवस्था ठीक है? क्या सभी लोगों तक चेतावनी पहुंचाने का तरीका है? इन सवालों पर परिवार, ग्राम पंचायत और समुदाय के साथ चर्चा कीजिए, क्योंकि जब हम मिलकर तैयारी करते हैं तभी सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आपदा से पहले की गई तैयारी हमारे जीवन, आजीविका, पशुधन और गांव के संसाधनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें याद रखना चाहिए कि आपदा आने

0: के बाद समय बहुत कीमती होता है, इसलिए सुरक्षा के बारे में सोचने का सही समय संकट आने से पहले ही है। हम अपने गांव में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प ले सकते हैं, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमने सभी बातों को जाना। हम अपनी ग्राम पंचायत की बैठकों में आपदा सुरक्षा को मुद्दा बनाएंगे और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जब गांव का हर व्यक्ति जागरूक होगा, हर परिवार तैयार होगा, हर समुदाय साथी अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हमारा गांव अधिक सुरक्षित बन सकेगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि बहुत सारी बातें की आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बातचीत का विषय है स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट को समझना भी जरूरी, रिपोर्ट हाथ में आने के बाद क्या करें। कहते हैं श्रोता साथियों कि स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होते हैं तो समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते हैं।
0: जी
1: कभी
0: हाँ।
1: कमजोरी महसूस होने पर, कभी चक्कर आने पर, तो कभी डॉक्टर की सलाह पर हम खून की जांच, शुगर की जांच, थायराइड और दूसरी जांचें करवाते हैं। जांच करवाने के बाद मनीषा रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है तो हम उसे लेकर घर तो ले आते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उस रिपोर्ट में लिखे अंकों, शब्दों और संकेतों का क्या मतलब है? क्योंकि कई बार रिपोर्ट में किसी जांच का परिणाम सामान्य सीमा से ऊपर या नीचे लिखा होता है।
0: बिल्कुल।
1: उसे देखकर कोई व्यक्ति घबरा जाता है तो कई यह सोचकर रिपोर्ट को रख देता है कि शरीर में कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग दूसरों की रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट की तुलना करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए कि रिपोर्ट हाथ में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से समझना और उसके अनुसार उचित कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी
1: इसी
0: हाँ।
1: महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे समझना है और किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो बातें तो ढेर सारी होंगी मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वाघर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य जांच को समझना जरूरी, रिपोर्ट हाथ में आने के बाद क्या करें। यही अगर अंजलि जी बात करें कि स्वास्थ्य जांच करवाना क्यों जरूरी है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर हर दिन कई तरह के काम करता है।
1: बिल्कुल,
0: हम चलते हैं, काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं। इन सभी कामों के लिए हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन श्रोता साथियों, कई बार शरीर में होने वाली परेशानी की शुरुआत में हमें कहीं खास लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम करता रहता है और उसे लगता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि श्रोता साथियों कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी होती है जिनका पता जांच के माध्यम से ही चलता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को खून में शुगर का स्तर बढ़ा हुआ हो सकता है लेकिन उसे शुरुआत में कोई खास परेशानी नहीं होती है। इस तरह श्रोता साथियों कुछ लोगों में खून की कमी हो सकती है जिसका पता खून की जांच से ही चलता है। ब्लड प्रेशर भी कई बार स्पष्ट लक्षणों से बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार में बीमारी का इतिहास और डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर जांच करवाना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, अब यही बात आती है कि हम जांच तो करवा लेते हैं लेकिन रिपोर्ट हाथ में आने के बाद सबसे पहले क्या करें। तो साथियों, रिपोर्ट मिलने पर सबसे पहले उस पर अपना नाम, उम्र और जांच की जानकारी सही से देख लें। रिपोर्ट में कौन कौन से जांच हुई है और उसके परिणाम क्या है इसे ध्यान से पढ़ें। यदि कोई शब्द या जानकारी समझ में नहीं आता है तो उसे समझने के लिए स्वास्थ्यकर्मी की मदद लें। रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और डॉक्टर को दिखाएं। यदि डॉक्टर आगे की जांच या उपचार की सलाह देते हैं तो उसका पालन करें। रिपोर्ट देखकर स्वयं दवा शुरू करने या बंद करना उचित नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर और थायराइड जैसे कई शब्द लिखे होते हैं। इनके साथ कुछ अंक और सामान्य सीमा भी दी जाती है। इनका अर्थ समझे बिना केवल अंकों को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। उदाहरण के लिए शुगर की रिपोर्ट समझने के लिए यह जानना जरूरी हो सकता है कि जांच खाली पेट हुई थी या भोजन के बाद। इसलिए रिपोर्ट में लिखे परिणामों को डॉक्टर से समझें और इंटरनेट या दूसरों की रिपोर्ट देखकर स्वयं बीमारी तय न करें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि रिपोर्ट सामान्य हो तो क्या आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग जांच करवाते हैं और रिपोर्ट सामान्य आने पर मान लेते हैं कि अब कोई बीमारी है वो हो ही नहीं सकती। लेकिन यह समझना श्रोता साथियों पूरी तरह सही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: किसी जाँच की सामान्य रिपोर्ट यह बताती है कि उस जांच में मापा गया परिणाम निर्धारित सीमा के भीतर है लेकिन इससे श्रोता साथियों हर तरह की बीमारी की संभावना समाप्त होना नहीं है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को लगातार पेट में दर्द हो रहा है और उसकी जांच एक सामान्य आती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पेट दर्द का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर जरूरत के अनुसार दूसरी जांच या प्रशिक्षण की सहायता दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह श्रोता साथियों अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान, चक्कर, कमजोरी या सांस फूलने जैसी समस्याएं हो रही है तो केवल एक सामान्य रिपोर्ट के आधार पर इन लक्षणों को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यदि कोई परेशानी बनी रहती है, बढ़ती जाती है या बार बार होती है अंजलि जी, तो हमें डॉक्टर से दोबारा मिलना चाहिए। दूसरी ओर श्रोता साथियों अगर रिपोर्ट सामान्य है और कोई परेशानी नहीं है तो बेवजह डरने या बार बार जांच करवाने की जरूरत नहीं है। आगे की जांच और स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां डॉक्टर की सलाह और व्यक्ति की जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि श्रोता साथियों में रिपोर्ट को समझना है लेकिन अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर भी ध्यान देना है।
1: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट को समझना भी जरूरी है और रिपोर्ट हाथ में आने के बाद हम क्या करें, तो बातें और भी आगे निरंतर यूं ही श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रिपोर्ट की चीजों को हमें ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है, तो श्रोता साथियों, रिपोर्ट में कोई परिणाम सामान्य सीमा से बाहर आने पर घबराने की जरूरत नहीं होती है। कई बार भोजन, दवाइयों या दूसरी परिस्थितियों के कारण भी जांच के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए और उनकी सलाह लें। डॉक्टर जरूरत के अनुसार दोबारा जांच कर सकता है, उपचार या जीवन शैली में बदलाव की सलाह भी दे सकता है। यदि रिपोर्ट में किसी गंभीर परिणाम के लिए तुरंत संपर्क करने का निर्देश दिया गया है तो हमें देर नहीं करनी है। सही समय पर सलाह लेना स्वास्थ्य की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डॉक्टर रिपोर्ट के साथ साथ व्यक्ति की उम्र, लक्षण, पुरानी बीमारियों और चल रही दवाइयों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे उन्हें रिपोर्ट का सही अर्थ समझने और आगे की देखभाल तय करने में मदद मिलती है। डॉक्टर के पास जाते समय पुरानी रिपोर्ट और दवाइयों की जानकारी भी साथ रखें। इससे स्वास्थ्य में आए बदलावों को समझना आसान हो सकता है। याद रखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट या दवा के आधार पर अपना उपचार हमें तय नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें परिवार की भूमिका की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमारे समाज में परिवार एक दूसरे की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण सहारा होते हैं। जब घर में कोई व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच होती है और रिपोर्ट आती है तो परिवार के लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार श्रोता साथियों घर में बुजुर्गों की रिपोर्ट लेकर आते हैं लेकिन उनमें लिखे जो शब्द हैं वो हमें समझ नहीं आते। कुछ लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है तो कुछ लोगों को डॉक्टर से सवाल पूछने में संकोच होता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों परिवार के किसी सदस्य को उसके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिपोर्ट को समझने में मदद करनी चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों को से बताना चाहिए। अगर परिवार में किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में कोई बदलाव आता है साथियों, तो उसे डांटने या डराने के बजाय सहयोग देना चाहिए। यही अगर अंजलि जी उदाहरण के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, अगर किसी बुजुर्ग की शुगर बढ़ी हुई आती है तो उन्हें यह कहकर परेशान नहीं करना है कि आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा इसलिए ऐसा हुआ है। इसके बजाय श्रोता साथियों उनकी दिनचर्या और खान पान की जरूरत के अनुसार हमें बदलाव करने में उनकी मदद करनी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रिपोर्ट देखकर खुद ही बीमारी तय करना, बिना सलाह के दवा लेना और किसी दूसरे व्यक्ति की दवा इस्तेमाल करना गलतियां हैं। इसी तरह रिपोर्ट में परिणाम सामान्य आने पर यदि परेशानी बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें और न ही उसकी मात्रा बदलें। रिपोर्ट को सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर पुरानी रिपोर्ट भी डॉक्टर को दिखाएं। सही जानकारी और उचित सलाह से अनावश्यक चिंता और गलत उपचार से बचा जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं परिवार के सभी सदस्यों की सेहत का ध्यान रखती हैं लेकिन अपनी जांच को नजरअंदाज कर देती हैं। लगातार कमजोरी या दूसरी परेशानी होने पर जांच और चिकित्सीय सलाह को टालना नहीं चाहिए। महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछने और सही जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। बुजुर्गों और बच्चों की रिपोर्ट को उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार समझना जरूरी है। बच्चों की सामान्य जांच सीमाएं वयस्कों से अलग हो सकती हैं, इसलिए परिवार के हर सदस्य की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएं और उनकी सलाह के अनुसार देखभाल करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जांच हमारे शरीर की स्थिति के बारे में हमें जानकारी देती है, लेकिन श्रोता साथियों स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोजमर्रा की आदतें हैं वो भी महत्वपूर्ण होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भोजन में अपनी जरूरत के अनुसार दालें, अनाज, हरी सब्जियां, फल और जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं उन्हें हमें शामिल करना चाहिए। साथ ही साथियों कहना चाहेंगे कि पर्याप्त पानी पीना है, नींद पूरी लेनी है और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तंबाकू और जो दूसरे जो हानिकारक पदार्थ हैं उनसे हमें दूरी बनानी है। अगर कोई व्यक्ति श्रोता साथियों पहले से बीमार है तो उसके खान पान और व्यायाम में बदलाव के लिए हमें डॉक्टर से उचित सलाह हमें लेनी है। साथ ही साथियों किसी एक जांच की रिपोर्ट को देख कर यह नहीं मान लेना चाहिए कि केवल खान पान बदलने से हर समस्या है वो ठीक हो जाएगी। कुछ परिस्थितियों में दवा या दूसरे के इलाज की जरूरत हो सकती है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों स्वास्थ्य जांच करवाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसकी रिपोर्ट को सही तरीके से समझना। रिपोर्ट हाथ में आने के बाद उसे ध्यान से देखें, अपने सवाल पूछें, डॉक्टर से सलाह लें और जरूरत के अनुसार आगे की जांच या उपचार करवाएं। रिपोर्ट देखकर खुद ही बीमारी तय न करें और न ही बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयों में बदलाव करें। आज हम सभी यह बात अपने मन में ठान सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, रिपोर्ट मिलने के बाद उसे समझेंगे, अपने सवाल पूछेंगे और सही सलाह के अनुसार कदम उठाएंगे। जांच करवाना समझदारी है, रिपोर्ट समझना भी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट से न घबराएं, सही सलाह अपनाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये समझा कि जांच करवानी हमारे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों जांच की रिपोर्ट को सही तरीके से समझना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: रिपोर्ट हाथ में आने के बाद सबसे पहले उसे ध्यान से देखिए, उसमें अपना नाम, जांच की तारीख और दूसरे विवरण है वो हमें जांचने हैं। अगर कोई परिणाम सामान्य सीमा से बाहर दिखाई दे रहा है तो तुरंत घबराने या खुद से ही बीमारी का नाम तय करने के बजाय हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रिपोर्ट को सुरक्षित रखिए, पुराने रिपोर्टों को संभाल कर रखिए और जरूरत पड़ने पर तुलना करने के लिए आप डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं। इंटरनेट पर मिली अधूरी जानकारी के आधार पर दवा हमें शुरू या बंद नहीं करनी है। यदि कोई गंभीर लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा याद रखना है कि रिपोर्ट केवल कागज पर लिखे आंकड़े नहीं होते, वे हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, लेकिन उस जानकारी का सही अर्थ समझना और उसके अनुसार उचित कदम उठाना हमारे लिए जरूरी होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ।
0: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को क्यों न एक और प्यारे से गीत के साथ में हम मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबो ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हंगरा ने हाथे मलीने जावु है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ ने अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।